0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया, हाँ, कहने लगी हेलो
1: हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था,
1: वो थी
0: मैं था,
1: तन्हाई थी।
2: उस दिन हम मिले तन्हाई में।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे पूजा। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस की बड़ी कंपनियों में रोजगार कुल मिलाकर स्थिर बना हुआ है। मार्च 2026 में लगभग 310,000 कर्मचारी कार्यरत थे। इसी बीच पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से सामने आने वाले प्रमुख निष्कर्ष है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय यह विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल भंग कर दिया गया। खराब प्रबंधन और असहनीय हो चुकी निष्क्रियता से नाराज मंत्री माइकल सिक्यूएन ने बोर्ड के सदस्यों को एक एक करके बुलाया और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी। मामला ये है कि एसटीसी खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में विविधता लाने में असफल रहा है, जिससे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। ये एक ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे मंत्री ने दिसंबर से ही जनता के सामने व्यक्तिगत रूप से लिया था। मॉरिशस का शैक्षिक और सांस्कृतिक जगत में अपनी सबसे प्रतिष्ठित महानुभावों में से एक प्रसिद्ध मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर विनेश हुकुम सिंह को सबसे बढ़कर मॉरिशस क्रियोल भाषा की पहचान और उसके महत्व को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने के रूप में याद किया जाता है। आज ये हस्ती हमारे बीच नहीं रहे। 1970 के दशक से ही ऐसे समय में जब मातृभाषा को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था और इसके प्रति कई पूर्वाग्रह मौजूद थे, विनेश हुकुम सिंह ने अपने जीवन को मॉरिशस की भाषाई विरासत की वैज्ञानिक नींव तैयार करने के लिए समर्पित कर दिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, यानी हर 5 में से एक से अधिक मॉरिशस वासी इस आयु वर्ग में आते हैं। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल कुछ घिरे रहेंगे। शाम को देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हल्की वर्षा हो सकती है। अन्य इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 23 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:51 पर हुआ। सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे। Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Stop. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र हम साथ मिलकर तय करने वाले हैं। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक मैं आपका साथ निभा रही हूँ। तो चलिए, गुरुवार का दिन है आज और आज है 1 अक्टूबर 2024। तो चलिए, ये महीना आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, सब पूर्ण हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए श्रोताओं, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आपके लिए, और आज की सुबह जो है आपके लिए बेहद ही खुशगवार हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिव्य दृष्टि कार्यक्रम के साथ, और ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से आचार्य सकलानी जी की प्रस्तुति में।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस एमएडीएम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। इस समय आप

योऽन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा हिंदू संसार इस समय श्राद्ध पक्ष में अपने अपने पितरों का पूजन कर रहा है। हम श्राद्ध पक्ष में हैं श्रोताओं, और संपूर्ण हिंदू समाज, आस्तिक हिंदू समाज अपने पितरों का पूजन कर रहा है, पितरों को याद कर रहा है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि इस समय और पितर लोग जो हैं धरती पर हैं। ये धरती पर कैसे आए हैं पितर इस समय, सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि इसी समय क्यों आए हैं, मार्च अप्रैल में क्यों नहीं आए हैं, या दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं आए हैं, इसी समय क्यों आए हैं। श्रोताओं, इसका जो वैज्ञानिक तर्क है और हमारा जो शास्त्र है वो कहता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि जो जहाँ से निकलता है वो उसकी परिक्रमा करता है। तो सूर्य से पृथ्वी निकली हुई है, तो इसलिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का ही अंश होने के कारण, और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और इस परिक्रमा पथ पर विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि इस परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते करते इस समय जो ये हमारा श्राद्ध पक्ष का जो समय होता है, ये आश्विन कृष्ण पक्ष हम जिसको कहते हैं, इसी समय पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर होता है, सबसे नज़दीक केंद्र पर होता है। इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थान पर है। और इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारे पितर पृथ्वी पर आ रहे हैं, पृथ्वी पर पितर आ कहाँ से रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि पितरों का निवास कहाँ है, पितृलोक में है। पितृलोक में है, इस यूनिवर्स में पितृलोक कहाँ है। तो इसके संदर्भ में ज्योतिष में और सूर्य सिद्धांत, ये बहुत अद्भुत पुस्तक है, ये कहता है कि विदूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति, कि चंद्रमा का जो ऊर्ध्व भाग है, जिसको आज की भाषा में वैज्ञानिक लोग जो हैं डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, तो जो वो जो ऊर्ध्व भाग है, विदूर्ध्वभागे, विदु कहते हैं चंद्रमा को, तो विदूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति, चंद्रमा का जो दूसरा भाग है वहाँ पितरों का निवास है, अर्थात यही पितरलोक हैं। और इस समय पितृलोक जो है पृथ्वी के बहुत करीब आया है। और श्रोताओं, बिल्कुल ऐसा ही होता है पितरों के साथ भी, जैसे आपका कोई भाई अमेरिका में रहता है पिछले 20

वर्षों से आप हर बार उसको निमंत्रण दे रहे हैं, भाई आ फलाने की शादी है, ये है वो, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है। अचानक उसको उसका ऑफिस जो है यहाँ करीब के देश में सेसेल में एक मीटिंग के लिए एक हफ्ते के लिए भेजता है, तो जब वो सेसेल आता है ऑफिस के काम से, जल्दी जल्दी काम निपटा करके उसके मन में होता है कि मैं यहाँ आया हूँ और इतना नज़दीक मॉरिशस नज़दीक में है, तो चाहे कुछ भी हो कैसे करके मैं थोड़ा सा थोड़ी घड़ी के लिए ही सही मैं मॉरिशस जाता हूँ, क्योंकि ये हर किसी के मन में होता, अपने घर जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, अपने देश जाता हूँ, क्योंकि अमेरिका से यहाँ नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पितरों के साथ भी होता है, क्योंकि इस समय पितर लोग सबसे नज़दीक आए हैं पृथ्वी के, और इसीलिए सारे पितर जो हैं पृथ्वी पर अपने अपने परिवारों के घर में आते हैं। और जब पितर इतनी दूर से आपके घर में आया, तो श्रोताओं आपका कर्तव्य क्या है? कोई व्यक्ति और बहुत दूर से, सपोज आप त्रियोले रहते हैं और कोई व्यक्ति जो है मायबू से चल करके आपके घर में पहुंचा, तो आपका कर्तव्य क्या होता है? भाई आपका कर्तव्य होता है कि उसको थोड़ा उसको थोड़ा पानी पिलाएं, जल दें उसको, थोड़ा सा नाश्ता भोजन अगर प्रबंध कर सकें तो। ये इस तरह से आप उतनी दूर से व्यक्ति आपके घर पर आया आपने और उसको एक बूंद पानी भी नहीं पूछा, तो कितना निराश वो होता है, भले ही कुछ नहीं बोलेगा लेकिन निराश तो होगा ही ना। यही स्थिति पितरों की होती है। पितर जो है और घर में आए, आपके घर में आए और आपने उनको एक लोटा पानी भी नहीं दिया, जरा एक अंजलि जल भी नहीं गिराया, तो वो पितर जो है कितना निराश होता है। वो पितर विचार करता है कि मैंने अपना जीवन इसके लिए खपाया, इसको उत्पन्न किया, पाला पोसा, इतना बड़ा बनाया, घर परिवार ये सब जमीन जायदाद इसके लिए जोड़ी, और आज मैं इसके घर पे आया हूँ, ये एक अंजलि जल भी नहीं गिरा रहा है, तो इससे बढ़कर के कृतघ्न कौन होगा, इससे बढ़कर के नमक हराम कौन होगा। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि पितर जो हैं और निराश होकर के श्राप दे करके वापस चले जाते हैं। इसलिए श्रोताओं इस अवसर पर पितर का पूजन बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि देवता नाराज होते हैं तो पूजा पाठ करने से देवता खुश हो जाते हैं, लेकिन श्रोताओं पितर एक बार नाराज हो गया तो फिर उसको मनाना अत्यंत कठिन हो जाता है, और जहाँ पितर रुष्ट होता है वहाँ परिवार में जो है श्रोताओं बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत तकलीफ हो जाती हैं, घर में शांति नहीं अशांति हो जाती है उस घर में। जहां पितर रुष्ट होता है, जहां पितर अत्यंत रुष्ट होता है वहां वंश की वृद्धि रुक जाती है, उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि कई बार लोग हमारे पास आते हैं, ज्योतिषियों के पास आते हैं, पंचांग देखते हैं, तो ज्योतिषी बताता है भाई इसमें पितृदोष है, क्योंकि आपके पितर जो हैं वो रुष्ट हैं इसीलिए, और आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है इसीलिए आपके घर में और इतनी अशांति बनी हुई है। तो श्रोताओं यही अवसर है, पितृपक्ष ही ऐसा दिव्य अवसर हमको ऋषियों ने दिया है कि हम इस अवसर पर अपने और पितरों का पूजन करें, उनके लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, ये सब हमको करना चाहिए। पुत्र का धर्म ही है ना, पुत्र क्यों पैदा किया माता पिता ने? क्योंकि पुत्र जो है वो और पुम नामक नरक से जो पितरों का उद्धार करता है, इसलिए उसका नाम पुत्र है। तो ये पुत्र का धर्म है कि अपने पितरों का उद्धार करे। अब पितरों के लिए पिंड देना चाहिए। अब पिंड कब देना चाहिए, इस विषय में सामान्य जन समुदाय में बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जब उनको जिस दिन उनको समय मिलता है वो उस दिन वो पिंड करते हैं, लेकिन वास्तव में व्यवस्था ऐसी नहीं है, क्योंकि पितर का जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है, जिस तिथि को, अब आपके पिताजी की मृत्यु एकादशी के दिन हुई और आप जो हैं आपको तो फुर्सत संडे को मिल रहा है, संडे को तो पंचमी था तो आपने पंचमी के दिन और पिंड कर दिया, लेकिन पितर तो एकादशी को आएगा। अब वो एकादशी को आएगा तो एकादशी में घर में ताला लगा हुआ है, ताला बंद हो रखा है, कोई घर पे नहीं है, तो पितर नाराज होकर चला जाएगा, रुष्ट होकर जाएगा, और आपने तो भले ही आपने पिंड सब किया है लेकिन आपने गलत दिन किया है। इसलिए ये भी इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमको अपने कब हमको पिताजी के लिए पिंड करना है, कब माताजी के लिए करना है, कब दादा दादी के लिए करना है, ये सब विधिवत यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर श्रोताओं

0: दो प्रकार के हैं, एक जीवित पितर भी होते हैं, जो हमारे माता पिता वो जीवित पितर हैं, लेकिन जो मृत पितर हैं उनका हम ये श्राद्ध पक्ष में करते हैं। जीवित पितर का तो रोज उनका पूजन होता है, गुरुजनों के प्रति हमको सम्मान करना चाहिए, जो माता पिता गुरु आचार्य वृद्ध बड़े भाई ये सब नाना नानी मामा मामी सास ससुर आदि ये नित्य सम्मान पूर्वक प्रणाम इनको करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं श्रोताओं मनुस्मृति में कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम्। जो मनुष्य हमेशा अपने वृद्धजनों को अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उसको चार चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, ऑटोमेटिक चार चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती हैं। वो चार चीज़ें कौन कौन हैं? आयुर्विद्या यशोवलम, उसकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि श्रोताओं बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने से आयु बढ़ती है। आप जितनी बार बड़े बुजुर्गों का पैर छुओगे, हर बार बड़ा बुजुर्ग आपको जीते रहो बोल करके आशीर्वाद देगा, तो वो आपकी आयु की वृद्धि होती है, आयु विद्या बढ़ती है, आपका बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि बड़े लोगों का हाथ जब सिर पर पड़ता है तो सिर में जो है बुद्धि को स्पंदन होता है, महापुरुषों का हाथ, इसलिए तो जो लोग चतुर लोग होते हैं जब महापुरुष मिलते हैं तो उनके सामने सर झुकाते हैं, उनसे कहते हैं महाराज आप अपना हाथ जरा हमारे सिर पर रख दो, क्योंकि उनका हाथ का स्पर्श होने से बुद्धि जो है बुद्धि में स्पंदन होता है, बुद्धि बढ़ जाती है और फिर यश बढ़ता है उसका, क्योंकि चारों तरफ संसार भर में और ऐसे व्यक्ति का यश कीर्ति चारों तरफ बढ़ती है, जो भाई दूसरे का सम्मान करता है निश्चित रूप से उसका यशोगान गाया जाता है और आखिर में उस व्यक्ति का बल भी बढ़ जाता है, वो बलवान उसका बल बढ़ता है ना। तो ये चारों चीज़ें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए अभिवादन करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को नमस्कार करने में श्रोताओं आपकी इज्जत कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो इसका मतलब है हम छोटे हो गए, नहीं ये गलत है, हम तो नमस्कार करने के बाद बड़े हो जाते हैं, हमारा शास्त्र कहता है आप बड़े हो जाते हैं। तो श्रोताओं आप निश्चित रूप से बड़े बनिए, रोज़ अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान प्रणाम उनको कीजिए। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेकर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

तो चलिए श्रोताओं, 6:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, और अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वालांचिना और पिचिकॉन फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है से डुबलेवेया पिचिकॉन, पिचिकॉन विलाज के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में है फिनिक्स बेवरेज ग्लॉस गैलरी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को सपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए श्रोताओं, भोर की बेला इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे और अब आपके लाए हैं चंद भावगीत इस समय से लेकर 6:30 बजे तक।

कैसा होगा ये हम नहीं जानते, मगर आज को खूबसूरत बनाकर आने वाले कल का स्वागत जरूर कर सकती है। 6:25 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, हम आपको इशारा

करें कि कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं, पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे और 7 बजे हम मिलेंगे सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2026 में लगभग 310,000 कर्मचारी कार्यरत थे। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान सरकार की आय और खर्च का क्या हाल रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये लगभग 170 बिलियन रुपए से बढ़कर 197 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल भंग कर दिया गया। खराब प्रबंधन से नाराज मंत्री माइकल सिक्यूएन ने बोर्ड के सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी है। नए बोर्ड की संरचना को कल शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये दिन हमें बुजुर्गों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। और विदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुबई से तेल अवीव जा रही एक उड़ान के दौरान दूसरे पायलट पर चाकू से हमला करने और कथित तौर पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने के बाद एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉरिशस की बड़ी कंपनियों में रोजगार कुल मिलाकर स्थिर बना हुआ है। मार्च 2026 में लगभग 310,000 कर्मचारी कार्यरत थे। इसी बीच पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से सामने आने वाले प्रमुख निष्कर्ष है। शबनीज उजीर विधिमा सिबुरन।
1: मॉरिशस की बड़ी कंपनियों में रोजगार कुल मिलाकर स्थिर है, जबकि वेतन में बढ़ोतरी हुई है। ये स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के नवीनतम आंकड़ों से सामने आया है। मार्च 2026 में इन कंपनियों में करीब 3,10,000 कर्मचारी थे, जो एक साल पहले की तुलना में केवल 495 अधिक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, खासकर प्रशासनिक सेवाओं, आवास एवं खान पान सेवाओं तथा वित्तीय गतिविधियों में। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि विदेशी कामगारों की संख्या एक साल में 1200 से अधिक बढ़ी है। वेतन के मामले में औसत मासिक वेतन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर करीब 46,000 रुपए हो गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी सूचना एवं संचार क्षेत्र, साथ ही स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में दर्ज की गई है।
0: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल भंग कर दिया गया। खराब प्रबंधन और असहनीय हो चुकी निष्क्रियता से नाराज मंत्री माइकल सिक्यूएन ने बोर्ड के सदस्यों को एक एक करके बुलाया और उन्हें उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी। मामला ये है कि एसटीसी खाद्य उत्पादों की आपूर्ति में विविधता लाने में असफल रहा है, जिससे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। ये एक ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसे मंत्री ने दिसंबर से ही जनता के सामने व्यक्तिगत रूप से लिया था। इसके साथ ही राशन

0: चावल का गंभीर मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, जिसकी बार बार होने वाली कमी से परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए बोर्ड की संरचना को कल औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा, मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद। बिना किसी आधिकारिक कब्जा अधिकार पत्र के सरकारी जमीन पर रहने वाले परिवारों के नियमितकरण का मुद्दा आज आवास और एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद और पोर्टलिस के बिशप मोसेया जॉ मिकाएल जुरोन के बीच बिशप कार्यालय में हुई बैठक की केंद्र में रहा। बैठक में विशेष रूप से रोशबुआ की स्थिति पर बात की गई। इसके अलावा काचेशैल और कुतु राफै के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे परिवारों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया हर मामले को अलग अलग आधार पर और कानूनी ढांचे का पालन करते हुए की जाएगी। सबसे कमजोर परिवारों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए वो निजी क्षेत्र के साथ सहयोग की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य मंत्रालय को जमीन उपलब्ध कराना था और मंत्री शकील मोहम्मद ने इन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सहयोग करने की बिशप की इच्छा का भी स्वागत किया। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये दिन हमें बुजुर्गों को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए भी प्रेरित करता है। इसे लोगों के रूप में जो अपना अनुभव, ज्ञान, कौशल और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा अगली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं। इस 36वें संस्करण का विषय है दीर्घायु का युग, लंबी जिंदगी के लिए व्यवस्थाओं पर नए सिरे से विचार। मॉरिशस की आबादी उम्र दराज हो रही है, लेकिन क्या मॉरिशस वासी बेहतर जीवन जी रहे हैं और क्या उनके पास इस वास्तविकता का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन हैं? बजट 2026-2027 पर केंद्रित एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कई आपस में जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। जनसंख्या का वृद्ध होना, पुरानी बीमारियों में वृद्धि और सम्मानजनक जीवन जीने की बढ़ती लागत, इन सभी चुनौतियों से एक ही सवाल उठता है, आने वाले वर्षों में मॉरिशस अपने सामाजिक कल्याण मॉडल को कैसे बनाए रख पाएगा। आद्रिया वालिया, विधिमा सिबुरन।
1: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मॉरिशस में आज करीब हर 5 में से एक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। वहीं 2050 तक देश की आबादी घटकर 1.1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने श्रम बाजार, पेंशन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को लेकर चेतावनी दी है, खासकर इसलिए कि लंबी उम्र का मतलब हमेशा बेहतर स्वास्थ्य नहीं होता। रिपोर्ट के अनुसार 81% मौतें गैर संचारी रोगों से जुड़ी हैं। वहीं 25 से 74 वर्ष की आयु के हर 3 वयस्कों में से एक मोटापे से प्रभावित हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की लागत का सवाल भी उठाती है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर होने वाले मौजूदा खर्च का 45% सीधे मरीजों द्वारा वहन किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाई गई एक और चुनौती लोगों की खरीद शक्ति से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 8.5% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के लिए चुनौती केवल आर्थिक विकास सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ लोगों के जीवन स्तर और कल्याण में दिखाई दे। इसके साथ ही बढ़ती उम्र की आबादी की जरूरतों का पहले से अनुमान लगाना, स्वास्थ्य संबंधी रोकथाम को मजबूत करना और ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सामाजिक सुधार वास्तव में गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करें। संयुक्त राष्ट्र ने आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाए रखने की सिफारिश की है। साथ ही सुधारों के सबसे कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने पर भी जोर दिया है।
0: वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान सरकार की आय और खर्च का क्या हाल रहा है? स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी आय में 15% से अधिक

0: की वृद्धि हुई है। ये लगभग 170 बिलियन रुपए से बढ़कर 197 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। ये निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है, लेकिन सरकार ने खर्च भी काफ़ी अधिक किया है, यानी 273 बिलियन रुपए, जबकि पिछले वर्ष ये 226 बिलियन रुपए था। प्रणव बिहारी, विधि मासी बुलन।
1: ये 44 बिलियन रुपए के बजटीय घाटे से बढ़कर करीब 65 बिलियन रुपए हो गया है, और यहाँ हम केवल बजटीय संतुलन की बात कर रहे हैं। अगर इसमें स्थायी पूंजी की खपत यानी इमारतों और मशीनों जैसी परिसंपत्तियों के मूल्य में आई कमी को भी शामिल किया जाए तो ये अंतर 75 बिलियन रुपए से अधिक हो जाता है। लेकिन इस घाटे की वजह क्या है? सरकार अपनी आय के लिए करों पर काफी हद तक निर्भर है। कुल राजस्व का 83% करों से आता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा VAT यानी वाट का है, जिससे करीब 60 बिलियन रुपए प्राप्त होते हैं। ये आय और मुनाफे पर लगने वाले करों से 12 बिलियन रुपए अधिक हैं। वित्तीय लेन देन, पूंजी के आवागमन और कंपनियों, खासकर बड़ी कंपनियों के कारोबार पर लगने वाले टैक्स से केवल 11.4 बिलियन रुपए की आय होती है। जहां तक गैर कर राजस्व का सवाल है, इसमें सामाजिक योगदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे 14.4 बिलियन रुपए प्राप्त हुए हैं, जो 18% की बढ़ोतरी है। इसमें 13.7 बिलियन रुपए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आए हैं, और जब सरकार इस एकत्रित धन को खर्च करती है तो सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पर 106 बिलियन रुपए से अधिक खर्च होते हैं। इसमें पेंशन और अन्य सामाजिक एलोकेशंस जैसी सामाजिक सहायता शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 65 बिलियन रुपए से अधिक, जबकि शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 48 बिलियन रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं। इन तीन प्रमुख खर्चों को मिलाने पर ही कुल व्यय सरकार की आय से काफी अधिक हो जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य खर्च हैं, जैसे सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा। सरकारी खर्च में सामाजिक विकास और जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती रही है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर कुल 169 बिलियन रुपए खर्च किए गए, जो कुल सरकारी खर्च का 61% से अधिक है।
0: कल पुलिस और प्रवीण जगनाथ के बीच जारी बयानों के जरिए एक तरह का तीखा टकराव देखने को मिला। लाइन बैरक्स में प्रवीण जगनाथ ने CCID में अपनी पूछताछ के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि स्थिति इसके विपरीत है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत प्रवीण जगनाथ के सामने समय समय पर पेश किए जा रहे हैं। पुलिस ने बहस को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि किसी संदिग्ध से पूछताछ करने से पहले उसे लेकर उचित संदेह यानी रीजनेबल सस्पिशन होना जरूरी है, लेकिन पुलिस पर ये कोई बाध्यता नहीं है कि पूछताछ शुरू होने से पहले वो संदिग्ध को इन संदेहों की वैधता के बारे में समझाए या उसे विश्वास दिलाए। लेकिन MSM नेता की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। देर शाम जारी एक बयान में प्रवीण जगनाथ ने सीधे तौर पर अधिकारियों के रुख का विरोध किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सार्वजनिक रूप से कानूनी बहस में शामिल होने से इनकार करते हुए भी वे अपने रुख पर कायम हैं। उनका कहना है कि CCID ने अब तक उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से सामने नहीं रखा है जिनके आधार पर ये माना जा सके कि कोई अपराध किया गया है। इस पूरे विस्तृत मामले के केंद्र में मुस्तास्लिक्स से सामने आए खुलासे हैं। इनमें आरोप है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन और निगरानी प्रणालियों की खरीद और इस्तेमाल किया है जिन्हें अवैध बताया गया है। रितेश गरोबी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का प्रारंभिक आरोप कल रियाजुरांपा जिला अदालत में खारिज कर दिया गया है। मामला मुख्य रूप से आइलैंड नाम की एक मनोरंजन नौका से जुड़ा था, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए आंक की गई थी। पुलिस को संदेह था कि ये नौका अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई है। आरोपी ने हमेशा ये दावा किया है कि ये नौका उनकी मां ने उन्हें उपहार में दी थी। अपने फैसले में मैजिस्ट्रेट जिनात कासामाली ने

निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत उचित संदेह के आधार पर स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने जांच में हुई अत्यधिक देरी पर भी सवाल उठाया। ये जांच 5 साल से अधिक समय तक चली। अदालत ने इस देरी को अनुचित माना है, खासकर इसलिए क्योंकि रितेश गरोबी 2021 से ही हिरासत में है। हालांकि घावे में रहने वाली इस मछली पकड़ने वाली कंपनी के निदेशक पर अभी भी उनके भाई नीतिराज, जो एक स्कीपर है, के साथ ड्रग्स तस्करी के मामले में असाइजेस अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये मामला 3.3 बिलियन रुपए की अनुमानित कीमत वाली हेरोइन और ड्रग्स की रिकॉर्ड बरामद से जुड़ा है। ये मादक पदार्थ पोएटो कानूनी में उस जमीन में दबे पाए गए थे जिसका इस्तेमाल दोनों भाई नावों के निर्माण के लिए करते थे। दोनों भाइयों ने दोषी नहीं होने की दलील दी है। जी हाँ, दोषी नहीं होने की दलील दी है। मामले की मुख्य सुनवाई अगले वर्ष शुरू होने वाली है। मॉरिशस का शैक्षिक और सांस्कृतिक जगत अपनी सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक को खो बैठा है। जी हाँ, प्रसिद्ध मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर विनेश हुकुम सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं और 1970 के दशक से ही ऐसे समय में जब मातृभाषा को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था और इसके प्रति विनेश हुकुम सिंह ने अपने जीवन को मॉरिशस की भाषाई विरासत की वैज्ञानिक नींव तैयार करने के लिए समर्पित कर दिया है। क्रियोल मॉरिशिया की मानकीकरण और उनके महत्वपूर्ण शोध ने देश के स्कूलों में इस भाषा की शिक्षा शुरू होने का ऐतिहासिक रास्ता तैयार किया है। विदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुबई से तेलवीव जा रही एक उड़ान के दौरान दूसरे पायलट पर चाकू से हमला करने और कथित तौर पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने के बाद एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। यात्री और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू कर लिया और फ्लाई दुबई या विमान का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद विमान को उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के ताबूक हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान में 170 से अधिक लोग सवार थे। अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय बादल कुछ घिरे रहेंगे तथा शाम को देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रह रहकर वर्षा भी होगी। अन्य इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम तापमान 23 से 25, हाल इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:51 पर हुआ। सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा।

देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियाँ एक बार फिर। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी, मार्च 2026 में लगभग 310,000 कर्मचारी कार्यरत। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान सरकार की आय और खर्च का क्या हाल रहा है? स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी आय में 15

प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। ये लगभग 170 बिलियन रुपए से बढ़कर 197 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल भंग कर दिया गया। खराब प्रबंधन से नाराज मंत्री माइकल सिक्यूएन ने बोर्ड के सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी। नए बोर्ड की संरचना को कल शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये दिन हमें बुजुर्गों को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। विदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुबई से तेल अवीव जा रही एक उड़ान के दौरान दूसरे पायलट पर चाकू से हमला करने और कथित तौर पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश में एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6:51 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक फैजन को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच रेडियो विभाग को भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। Your news on NBC Play.

शोक समाचार सुनिए। नंबर 35 बी मिडिल रोड बेलेटवाल में 74 साल के 74 years old श्री हेमलाल वगिनलाल मोदी, श्री हेमलाल वगिनलाल मोदी जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज इनके मकान नंबर 35 बी मिडिल रोड बेलेटवाल से उठाकर शिविर किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। लालजी लेन मारी जानी रोजबेल में 81 साल की 81 years old श्रीमती प्रेमिला निनुत, श्रीमती प्रेमिला निनुत पैदाशी नाम चुरुमनी और जिन्हें लोग प्रेमिला नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के तीन बजे इनके पति धनराज निनुत के मकान लालजी लेन मारीजानी रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 8:30 PM रॉयल रोड सेंट मिशेल बिलिया में 63 साल के 63 years old श्री धर्मानंद रामगति, श्री धर्मानंद रामगति जिन्हें लोग भाई रामगति नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान रॉय रोड सेंट मिशेल बिलिया से उठाकर भूषण की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे 2:30 PM गंगा माँ लेन पालमा रोड कैठोबोन में 54 years old श्री संजीव चुरामन की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के तीन बजे इनके मकान गंगा मालेन पालमा रोड कैठोबोन से उठाकर कोदेगौद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM नंबर एस 31 सीते रोशबुआ में 48 साल की 48 years old श्रीमती आशा रेणुका रेणुखा मारीमुतु, श्रीमती आशा रेणुखा मारीमुतु पैदाशी नाम नीलाम्बा और जिन्हें लोग मीला नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के तीन बजे इनके पिता जीवनलाल नीलाम्बा के मकान नंबर एस 31 सीते रोशबुआ से उठाकर रोशबुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM क्रिस्टल लेन तेरोज में क्रिस्टल

20 अगस्त में 65 साल के 65 years old श्री पुमालई मनारू, श्री पुमालई मनारू जिन्हें लोग मलई मासो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे आज सपहर के 3 बजे इनके मकान क्रिस्टल लेन तेरूज से उठाकर वाली दुप्रत किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM ब्लॉक डी 1 NHDC मापू में 64 साल की 64 years old श्रीमती जयवंती रावा, श्रीमती जयवंती रावा पैदाशी नाम दो मार जिन्हें लोग विश्वानी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पति रतन रावा के मकान ब्लॉक डी 1 NHDC मापू से उठाकर त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM ननका रोड रिविया चुरांपा में 66 साल के 66 years old जनाब राफिक इकबराली, जनाब राफिक इकबराली जिन्हें लोग गोरा नाम से जानते थे कि का इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके बेटे अबीर इकबराली के मकान ननका रोड रिविया चुरांपा से उठाकर दफनाने के लिए पदिलास्का का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टूडे at 10 AM नंबर 13 डॉक्टर मोपले बुबासेमे 90 साल की 90 years old श्रीमती दयवंती पदारत, श्रीमती दयवंती पदारत पैदाशी नाम रामचरण और जिन्हें लोग चंदा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 13 डॉक्टर मोपले बुबासा से उठाकर कांले व्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोरेल में 66 साल के 66 years old श्री राम कृष्णा रामांजुलू, श्री राम कृष्णा रामांजुलू जिन्हें लोग देव नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके मकान मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोरेल से उठाकर बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM मुसलमान वीआईएस ब्रह्मस्थान में 88 साल के 88 years old श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन जिन्हें लोग प्रसाद नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनके बेटे आनंद सुब्रन के मकान मुसलमान वीआईएस ब्रह्मस्थान से उठाकर भूषण की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 9:30 AM जाचू कुलैन रोड बोनाकई में 76 साल के 76 years old श्री बालकरण जीत दियाल, श्री बालकरण जीत दियाल जिन्हें लोग मून नाम से जानते थे कि मृत्यु होगी है। इनके अर्थे आज सुबह नौ बजे इनकी विधवा कृष्णावती जीत दियाल के मकान जाचू कुलैन रोड बोनाकई से उठाकर मेचिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 9 AM टेम्पल रोड खैफकुआ में 72 साल के 72 years old श्री प्रेमचंद पदारत, श्री प्रेमचंद पदारत जिन्हें लोग राजन नाम से जानते थे की मृत्यु होगी है। इनके अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी पत्नी रंभा पदारत के मकान टेम्पल रोड खैफकुआ से उठाकर खैफकुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM ब्रांच रोड फोंजीसाक में 56 साल की 56 years old श्रीमती नम्रता देवी राम जीतन, श्रीमती नम्रता देवी राम जीतन जिन्हें लोग सुबेरा नाम से जानते थे कि मृत्यु होगी है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके भाई भावीश राम जीतन के मकान ब्रांच रोड फोंजीसाक से उठाकर फोंजीसाक का किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM बिहारी रोड पे चिराफरी में 53 साल के 53 years old श्री जय किशन राम लखन, श्री जय किशन राम लखन जिन्हें लोग मंगोल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान बिहारी रोड पे चिराफरी से उठाकर दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM नंबर 24 पालमा जंक्शन बासे रोड कैचोबोन में 74 साल के

74 years old, Shripati Dev प्रसिद्ध श्रीपति देव प्रसिद्ध जिन्हें लोग रामेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले सिक्योरिटी सोशल में काम करते थे। इनकी अर्थ है आज सुबह दस बजे इनके मकान नंबर 24 पालमा जंक्शन बसें रोड कैठोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा

0: जागेसर श्री जवाहरलाल जागेसर, जिन्हें रुकसंजय नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकर थी आज दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 321 एवेन्यू ओलिए कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाए जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। अक्टूबर महीने का पहला दिन, पहली तारीख, खेल समाचारों में आपका स्वागत है। यूईएफए नेशंस लीग में आज जर्मनी के लिए अहम मैच होगा सर्बिया के खिलाफ। नए हेड कोच यर्गन क्लॉप अब तक जीत के पीछे भाग रहा है। पिछले मैच में ग्रीस ने जर्मनी को हराया था और नेदरलैंड्स के खिलाफ ड्रॉ मैच रहा। इसी ग्रुप में ग्रीस आज नेदरलैंड्स का स्वागत करेगा। अन्य मैच माल्टा जिब्राल्टर, अज़रबैजान लिएचटेनस्टाइन, इजराइल कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ऑस्ट्रिया, डेनमार्क पोर्चुगल, वेल्स नॉर्वे। पोर्टुगल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, अभी बाद में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में आज सुबह अर्जेंटीना ने 4-0 से बोलीविया को हराया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में ग्रुप डी में आज एक मैच है गीनिया और केन्या के बीच। यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग के लीग स्टेज में कल आर्सेनल ने अपना मैच ड्रॉ किया पारी एफसी के खिलाफ। हैकेन 0 यूवेंटुस 3। बार्सिलोना ने एएस रोमा को 6-0 से पछाड़ा। बेनफिका 0 बायर्न म्यूनिक 3। ओलंपिक लियोन और चेल्सी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। फ्रेंडली मैचों में यूएसए 4 चिली 2, मेक्सिको 1 पेरू 1, लिचुआनिया 3 अंडोरा 0, सेशेल्स 0 श्रीलंका 2, बोत्सवाना 0 मोजाम्बिक 2, फिजी ने न्यू कैलिडोनिया को 2-1 से हराया और पापुआ न्यू गिनिया 1 सोलोमन आइलैंड्स 1। मैनचेस्टर सिटी को अपील करने के लिए कल तक का समय है। अगर सैंक्शंस लिए गए और सिटी की अपील गिर गई तो उसके जीते हुए टाइटल छीने जा सकते हैं, वापस लिए जा सकते हैं। 2009, 2010 और 2017-2018 के बीच 3 प्रीमियर लीग टाइटल सिटी के नाम हैं। 2 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड रनर अप था और 1 बार लिवरपूल। पर टाइटल को वेकेंट भी छोड़े जा सकते हैं, मतलब किसी को नहीं दिए जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बता दें, पोर्टुगल की टीम से वो उसके कैंप से, इंटरनेशनल कैंप से चला गया। उसने कहा कि वो बाद में कारण बताएगा। हेड कोच योज जेसस ने इससे पहले कहा था कि टीम कप्तान के साथ कोई अनबन, कोई रिफ्ट नहीं है। खबर है रोनाल्डो ने ट्रेनिंग में भाग लेने से इनकार किया था। पिछले मैच में कोच ने रोनाल्डो को खेलने का मौका नहीं दिया था। ट्रांसफर न्यूज, ब्रैडफोर्ड और जर्मनी के इंटरनेशनल खिलाड़ी केविन शादे को साइन करना चाहता है लिवरपूल। जेन्युइन कंटेंडर हैं, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उसके पीछे हैं। मैनचेस्टर सिटी पर लगे आरोपों के मद्देनजर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अर्लिंग हालैंड के लिए तैयार हैं। फिर बायर्न म्यूनिख की नज़र फिल फोडन पर है और ब्राइटन का स्टार खिलाड़ी यंकुबा मिंते अभी तक लिवरपूल में आना चाहता है। टेनिस, चाइना ओपन के पहले मैच में नोवाक जोकोविच ने नूनो बोगेस को हराया। जुलाई महीने में विंबलडन सेमीफाइनल में के बाद ये जोकोविच का पहला मैच था। आज लर्नर चेन वर्सेस उबेर उकाज, एलेक्स दे मिनो खेलेगा मारियानो नावोने के खिलाफ। एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में भारतीय महिला रिले टीम ने 4 बार 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल की। मेडल टेबल में चाइना, चीन 151 गोल्ड मेडल, 151 गोल्ड मेडल, जापान 50, टीम इंडिया 10 गोल्ड मेडल, टोटल 60। हॉकी में भारतीय लड़कियां फाइनल में पहुंची दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर। क्रिकेट में इसी समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल खेला जा रहा है। थोड़ी देर में दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और क्रिकेट में ही भारतीय क्रिकेट टीम के राजकुमार शुभमन गिल की ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इनिंग्स, क्विकेस्ट डबल सेंचुरी और वन डे मैच में हाईएस्ट रन चेस। वेस्ट इंडीज के 303

0: खिलाड़ियों की सेंचुरीज रही, टोटल 405 रनों का टारगेट। रोहित शर्मा 101 रन बना पाया, हीरो बना शुभमन गिल 223 नॉट आउट। टीम इंडिया ने टारगेट पार किया केवल 43 ओवर में। भारतीय टीम की जीत दूसरी जीत वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सीरीज इंडिया के नाम। शुभमन गिल की ये इनिंग्स क्रिकेट के इतिहास में यादगार रहेगी, ए रेफरेंस अ हीरोज नॉक। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: KHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सौरू MBC के मिला जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नुथावाई नुलावेनिया। टेक्सटाइल्स के सिक्तिया में शमीजरी बेलविल एंड कंपनी लिमिटेड जो नियमिताज रोड कॉफुक्रो में पावल जाला, एगो मशीन ऑपरेटर खोजता त एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया, नताजे जस्ती जानकारी खोजब टेलीफोने करिया 6 with 6 34 14 नता 52 53 91 27। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 अक्टूबर 2026। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जिलवा रिजोर्ट लिमिटेड जन कोस्टल रोड कालोजिन ग्रांड बे में पावल जाला, एगो स्टीवर्ड खोजता जिकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो किचन हेल्पर एक बरिस के एक्सपीरियंस चाहिला होई के, एगो कुक जिकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो असिस्टेंट कुक चाहिला एक बरिस के एक्सपीरियंस होई के, खोजता साथ में एगो हेड कुक जिकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो कारपेंटर जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो पोर्टर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, वाले जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो क्लीनर जेकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, एगो वेटर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, साथ में एगो स्पा थेरापिस्ट जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, और एगो पेंटर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है hr@zilwa-hotel.com। जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोन करिया 204-98-00 न 59-45-51-59। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्टोन इनोवेशंस लिमिटेड जोन एवेन्यू डे ला कॉनकॉर्ड लातू केनिक में पावल जाला, एगो ग्राड 1 मासों खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 52 52 26 98। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2026। रेस्टोरेंट के सेक्टर में रेस्टोरेंट ला रिवियर लिमिटेड जोन रिशमा आर्जी सेंट्रल फ्लैक में पावल जाला, एगो किचन हेल्पर खोजता जिकर HSC संगे 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया, न त टेलीफोने करिया 57 74 24 51। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में रविन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन विलेज हॉल स्ट्रीट ला क्लेमेंस रिवियर डू रोपा में पावल जाला, एगो ग्रेड 2 मासों खोजता जिकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 57 85 50 21। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। रेजिडेंशियल नर्सिंग केयर के सेक्टर में नॉर्दर्न एल्डरली केयर एंड रिहैबिलिटेशन लिमिटेड जोन लेनिन स्ट्रीट फोजुसाक में पावल जाला, एगो क्लेरिकल ऑफिसर खोजता साथ में एगो सोफेयर कम हैंडी वर्कर। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है deal@gmail.com न त सकबा टेलीफोने करे 57 63 66 22 और 59 44 82 44। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में compagnie chantier du Nord.

लिमिटे जुन रॉयल रोड कालबास में पावल जाला एगो वेल्डर खोजता जेकर तीन बरिस केल एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 52 56 60 33 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर 2026। ऑटोमेटिव के सिक्ते में फायूस गुलवादन लिमिटेड जुन रॉयल रोड बेले रिवियर सेश में पावल जाला एगो ग्रेड टू पैनल बी तक हो जाता जेकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन मॉरिशस जॉब पर कर दिया नता जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनिक करिया 57 81 26 90। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर 2026। रियल एस्टेट के सिक्ते में ला वाले विलेज लिमिटे जन रॉयल रोड पॉब्लो मुसेज में पावल जाला एगो मेंटेनेंस टेक्नीशियन खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 57 76 14 87। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 14 अक्टूबर 2026। हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में हिल्टन मॉरिशस रिजोर्ट एंड स्पा जन वुलमॉ फ्लिक ऑफ लाक में पावल जाला एगो स्टीवर्ड खोजता एगो लॉन्ड्री अटेंडेंट एगो रूम कम पब्लिक एरिया अटेंडेंट एगो लॉन्ड्री सुपरवाइजर जेकर HSC बाटे एगो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर जेकर HSC बाटे साथ में एगो किचन एंड HACCP कोऑर्डिनेटर और चाहेला टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोनो रिलेवेंट कोर्स जे कर ले बाटे त अच्छा होय एगो शेफ दे पार्टी कोल्ड किचन थाई शेफ दे पार्टी एगो कुक पेस्ट्री कुक हेड वेटर होस्टेस कम कैशियर बार्टेंडर प्लम्बर कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन चीफ इंजीनियर इनकम ऑडिटर जिकर HSC बाटे और ग्रुप्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है mauritius.recruitment@hilton.com। जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोनिक करिया 403 1000। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 18 अक्टूबर 2026। पारास्टेटल के सिक्तिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी CIA जन 5th फ्लोर म्यूचुअल एड बिल्डिंग 2-5 गेरोज मोस्क्वेयर पोर्टविस में पावल जाला एगो टेक्निकल एग्जीक्यूटिव खोजता एप्लीकेशन जन बाते पोस्ट द्वारा न त हैंड डिलीवर्ड सकबा जा करे एगो प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जन में चाहेला निमन से सीने करे के साथ में चाहेला एगो मोटिवेशन लेटर और एगो डिटेल्ड CV और चाहेला इस सब संगे तोहर ID एजुकेशनल और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स और कोनो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रही तब के फोटोकॉपी चाहेला रहे के एप्लीकेशन जन बातें ई पता पर विदा कर दी है दी ऑफिसर इन चार्ज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी और चाहेला देर से देर शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 लिख विदा कर देवे के ऊ भी सांझ के 4 बजे लिख जन पोस्ट के टाइटल है और जन जॉब रेफरेंस है उ चाहेला निमन से जन लवलो बाटे ओकर ऊपरे लेफ्ट हैंड कोना में निमन से लिख देवे के याद रखिया कि कौजीदा लोग उनकर उमेर 2.5 लिख नए चाहेला पहुँचे के सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट लिख जे जस्ती जानकारी खोजब त टेलीफोने करिया 211 77 77 और वो एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है याद रखिया 16 अक्टूबर 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ त लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले विलेज काउंसिल ऑफ बेलोम्ब एगो पार्ट टाइम विलेज हॉल और TV अटेंडेंट खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://lgsc.gov.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 7 अक्टूबर 2026। साथ में लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो असिस्टेंट नर्सरी मेट्रन खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://lgsc.gov.org/। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 12 अक्टूबर 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में क्यूपिप के रेजो में एगो हाउसमेड कम हाउसहोल्ड वर्कर खोजल जातबा और वो एप्लीकेशन करे खातिर EIC क्यूपिप EIC टेलीफोने करिया 675 1115 न 673 71

0: थॉट, जबकि कालबास के रिजो खातिर एगो हाउसमेट, एगो जॉर्जिनी और एगो केयर रखो जल जात बाटे। अप्रिकासों करी खातिर गुडलैंड्स के ईआईसी टेलीफोनी करिया 282-59-17 नता 282-59-18। ता ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाई नू लावेनिया।
1: MBC Radio, 24 hours a day.
2: चलिए श्रोताओं, 10:16 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। सबसे पहले मोंटाई ब्लांश के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है विलाज मोंटाई ब्लांश के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में है शिवाला रोड, लाफोज लेन, ओल्ड रेलवे ट्रक रोड, विदेशी लेन, पिछपाके रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को और गैर रोड, मोंटाई ब्लांश और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 1 अक्टूबर 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है सेंजियम मिल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है गुदख्वायाल से जैम मिल के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। वैसे सुबह 6 बजे से आप लोगों का साथ रहा और इस समय से आप हमारा साथ दे रहे हैं। ये जो है सफ़र हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। तो चलिए, गुरुवार का दिन है आज और आज है 1 अक्टूबर 2026। बस ये महीना आपके लिए बेहद ही शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। रेडियो के इस सुहानी सुबह से एक प्यारा सा पैगाम आपके लिए, आप हमेशा अपने दिल को खुश रखिए। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए इस हिंदुस्तानी सभा को जारी रखते हुए हम सुनेंगे चिंतन। चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: हार परिस्थितियों से नहीं होती है, हार तब होती है जब आत्मबल टूटता है। आत्मबल मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियां भी सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। अपने आत्मबल की सदा रक्षा कीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: झलकियां
1: झलकियां तो चलिए श्रोताओं, हम बढ़ेंगे झलकियों की ओर। हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए है

0: सुबह का नज़ाना कार्यक्रम चंद पुराने गाने आपकी सेवा में, और 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार चंद डुएट गाने आपके नाम। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम, ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, साथ में एक भोजपुरी गीत आपके लिए। 9 बजे समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद आप सुन सकेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है अनुराधा की प्रस्तुति में। 10 बजे के समाचारों के बाद आप भक्ति धारा कार्यक्रम सुन सकेंगे, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम पितृपक्ष के अवसर पर, और ये कार्यक्रम श्री सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 11 बजे पर समाचार फिर से पढ़े जाएंगे, और इसके बाद शमे फरूजा, ये कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम जो है सायदा के साथ। दिन के 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरीश शालिनी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे, और आरसी लेकर आएगी तमिल भाषा में कार्यक्रम 12:30 बजे। 1:30 बजे आप मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रीति के साथ सुन पाएंगे। जिनके साथ मंदारिन में कार्यक्रम 2:00 PM, 2:30 PM गुजराती कार्यक्रम अमिता के साथ, 2:45 PM पर आपकी पसंद ये कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में। सपहर के 3 बजे आप एक बार फिर से समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा भक्ति सागर, ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे, और इसके बाद जो है भक्ति सागर कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम वैसे सुमिता की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे, और इसके बाद सदाबहार गीत ये कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे, इसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे आप मंडारी में कार्यक्रम दाविद के साथ सुन सकेंगे। कलावाणी लेकर आएगी तमिल भाषा में कार्यक्रम रात के 7 बजे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ। शिरीष के साथ आप मराठी भाषा में कार्यक्रम 7:50 पर सुन सकेंगे। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम डॉक्टर अलकाज की प्रस्तुति में महफिल शब, ये कार्यक्रम समीर के साथ रात्रि के 8:40 पर। रात्रि के 9 बजे उषा लेकर आएगी भोजपुरी तड़का, और सुनहरे पर चंद पुराने गाने आप नीलमणि के साथ सुन पाएंगे। रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां आपके लिए।
1: झलकियां
2: झलकियां
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

तो चलिए श्रोताओ, आज की सुबह को मुस्कान के नाम करते हैं। दिल में उम्मीद और होठों पर प्यार के लिए आपका दिन शुभ हो। बस हमारे साथ जुड़े रहे। ये रेडियो मॉरिशस है। चंद पुराने गाने आपकी सेवा में। 7:35 हो चुके हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है गाइड और इस फिल्म से लिया गया गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

तो चलिए श्रोताओं, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सदाबहार गीत फिल्म गाइड से लिया गया। तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गाना जो है एक टाइटल सॉन्ग है, जी हाँ, शीर्षक गीत है हरियाली और रास्ता फिल्म से लिया गया।

श्रोताओं, रास्ते चाहे कितने भी लंबे हो, अगर दोनों ओर हरियाली हो तो सफर खुद ब खुद सुहाना हो जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, रास्ते पर चलते रहिए, हर मोड़ पर उम्मीद की हरियाली मिलती रहेगी। तो चलिए इसी सोच के साथ अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। पुराना गीत जो है आपके नाम हम कर रहे हैं, फिल्म अभिलाषा से लिया गया।

श्रुत्या, जिंदगी कितनी लंबी होगी ये हमारे साथ में नहीं, मगर हर पल कितना खूबसूरत होगा ये हमारी सोच और व्यवहार से तय होता है। तो चलिए, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं, आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजराना इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो चलिए, ये प्यारा सा गीत जो है फिल्म शोर से लिया गया मन्ना डे के स्वर में।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजीर के 8 बजलबा। सबको एक नमस्ते। भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको एक स्वागत करते हैं। जहाँ स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आखरा से पता चलल बाकी गल एक बरिस में वेतन में 6.2% की वृद्धि होल बाते विदेशी कामगार की संख्या में भी वृद्धि दर्ज करल गल बा। मार्च 2026 में करीब 310,000 कर्मचारी कार्यरत रहल। आर वित्तीय बरिस 2024 से 2025 के

दौरान सरकार के आय और खर्च के मतलब कैसे रहल। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ा के मुताबिक एक बरिस में सरकारी आय में 15% से जस्ती के वृद्धि होल बा। ई लगभग 170 बिलियन रुपया से बढ़ के 197 बिलियन रुपया से अधिक हो गल बा, से जस्ती हो गल बा। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ई आजकल विवाद के केंद्र में बाते, एकर निदेशक

0: नवा बोर्ड की संरचना काल सुक के मंत्रिपरिषद के मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से घोषित कर जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मौसे समय करीब 2,76,000 जना साथ बरिस या ओकर से जस्ती उम्र के है। ये दिन हमनी के बुजुर्ग के एगो अलग नजरिया से देखे खातिर प्रेरित करेला, मतलब जन अपन अनुभव ज्ञान कौशल और हमनी के सांस्कृतिक विरासत के एगो हिस्सा है आवत पीढ़ी तक ले पहुँच गलबा। दूसर देश की खबर में इसराइल की प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बोले बा कि दुबई से तेलवीव मतलब जन उड़ान में दूसर पायलट पर चाकू से हमला करल गल बा, कथित तौर पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त करे के कोशिश करला के बाद हो पायलट के गिरफ्तार कर लेवल गल बा। यात्री और चालक दल के सदस्य हमलावर पर मतलब हमलावर के काबू में ले आने सकलन से और फ्लाई दुबई विमान के नियंत्रण फिनो से अपन हाथ में लेलन से। एकर बाद विमान के उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के ताबूक हवाई अड्डा पर सुरक्षित उतारल गल। विमान में 170 से जस्ती यात्री सवाल रहल। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: On NBC Play and NBC.MU.
0: आठ बजकर 3 मिनट होलबा मरनी की खबर सुना जा। नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड 4 पोटली समय 90 बरिस के 90 के बीबी सफिया रामजोन। बीबी सफिया रामजोन पैदाशी नाम एदाताली और जिनका रासब कोई सिस्टर रामजोन नाम से जाना रलन जा इंतकाल कर गर हवन। वो डॉक्टर जीटू अस्पताल में के एक्स मात्रोन रहल। उनकर जनाजा आज दिन के दो बजे उनकर घरे नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड 4 पोटलिस से उठावल जाए और दफनाए खातिर रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। ननका रोड रिविया जोपा में 66 बरिस के 87 के जनाब्राफिक एक बाराली जिनका सब कोई गोरा नाम से जस्ती जानर लंजा इंतकाल कर गर हवन। उनकर जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा अबीर एक बाराली के घरे ननका रोड रिविया जोपा से उठावल जाए और दफनाए खातिर पॉइंट दिलासका कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टूडे एट 10 AM। लोलजी लेन मोताबा में 66 बरिस इमरनी की खबर फिर से सुना जा। लोलजी लेन मोताबा में 68 बरिस के 64 के श्री प्रीतम लाल जिलाल जिनकर सब कोई हावीन जोन नाम से जस्ती जाना रलन जा गुजरगर हवन। उनकर माती आज दिन के दो बज के आधा उनकर पत्नी नंदा लाल जिलाल के घरे लोलजी लेन मोताबा से उठावल जाए और मागी रानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोहल में 66 बरिस के श्री राम कृष्णा रमन जुलू जिनकर सबको देव नाम से जानत रलन जा गुजरगर हवन। उनकर माती आज फजर के 9 बजे उनकर घरे मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलव्यू मोहल से उठावल जाए और बेलमो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 9 AM। मोसेलमो VOS ब्रह्मस्थान में 88 बरिस के 88 के श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन जिनकर सबको प्रसाद नाम से जस्ती जाना रलन जा गुजरकर हवन। उनकर माती आज फजर के 9 बज के आधा उनकर बेटा आनंद सुब्रन के घरे मोसेलमो VOS ब्रह्मस्थान से उठावल जाए और बूशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 9:30 AM। जा चूकुलेन रोद

On a accueilli 76 ans que chez Balkaran Jit Dial. Chez Balkaran Jit Dial, j'ai une grâce à ce que je suis juste à Jonathan, j'ai un peu de temps, un karmati, un peu de temps, un patni Kishnavati Jit Dial, ke ghare जा चूकुलेन रो दबो ना कैसे उधावल जाए और मैं जिनका दिमाग सके समसान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 8:09 AM टेम्पल रोड क्रैव के में 72 बरी से के 72 जों के श्री प्रेमचंद पदारत जिनका सब को राजन नाम से जस्ती जाना ट्रलन जा गुजर कर हवनन कर माती आज फजीर के 10 बजे उनकर पत्नी रंभार पदरत के घरे टेम्पल रोड क्रैव के से उधावल जाए और रखिब के समसान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 10 AM ब्रांच रोड फोंजीसाक में 56 बरिस के सेकंड सीजन के श्रीमती नम्रता देवी राम जीतन जिनकरा सबके सुबेरा नाम से जस्ती जानटलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज फजीर के 10 बजे उनकर भाई या भाविश राम जीतन के घरे ब्रांच रोड फोंजीसाक से उठावल जाए और फोंजीसाकवे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 8:10 AM बिहारी रोड पेची गाफरी में 53 बरिस के 53 ओं के श्री जय किशन रामलखन श्री जय किशन रामलखन जिनकरा सबको मंगल नाम से जस्ती जाना ठलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर घरे बिहारी रोड पेची गाफरी से उठावल जाए और दागुची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 11 AM नंबर 24 पालमा जंक्शन बासर रोड कैटोबोन में 74 बरिस के 57 ओं के श्रीपतिदेव परसीद जिनकरा सबको रामेश नाम से जस्ती जाना ठलन जाओ गुजर कर हवन ओ पहले सिक्योरिटी सोशल में काम करे उनकर माती आज फजीर के 10 बजे उनकर घरी नंबर 24 पालमा जंक्शन बासर रोड कैटोबोन से उठावल जाए और गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 8:10 AM नंबर 321 एवेन्यू लिए काठोबोन में 56 बरिस के 57 ओं के श्री जवाहरलाल जागेसर जिनकरा सबको संजय नाम से जस्ती जाना रलंजा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के एक बजे उनकर घरे नंबर 321 एवेन्यू लिए काठोबोन से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 1 PM नंबर 35 बी मिडिल रोड बेलीटवाल में 74 बरिस के श्री हेमलाल वगिनलाल मोदी जिनकरा सबको सुरेश नाम से जस्ती जाना रहलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज उनकर घरे नंबर 35 बी मिडिल रोड बेलीटवाल से उठावल जाए और शेबैल के शमशान भूमि ले जावल जाए समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए लाल जी लेन मारी जानी रोजबेल में 81 बरिस के 81 ओं के श्रीमती प्रेमिला नेनुत पैदाशी नाम चुरुमणि अर्जुन करासो के प्रेमिला नाम से जस्ती जाना टोलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज सपहर के 3 बजे उनकर पति धनराज नेनुत के घरे लाल जी लेन मारी जानी रोजबेल से उठावल जाए और मारी जानी रोजबेल वे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 3 PM रूट रॉयल सेंट मिशेल बेलिया में 63 बरिस के 63 ओं के श्री धर्मानंद रामगति जिनकरा सबको भाई रामगति नाम से जस्ती जाना रलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के दो बज के आधा उनकर घरे रूट रॉयल सेंट मिशेल बेलिया से उठावल जाए और बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 2:30 PM गंगा मालीन पालमा रोड काठोबोन में 54 बरिस के सकंद काथों के श्री संजीव चुरामन गुजर कर हवन उनकर माती आज सपहर के 3 बजे उनकर घरे गंगा मालीन पालमा रोड काठोबोन से उठावल जाए और कोदी गौद के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 8:30 PM नंबर एस 31 सीते रोशबुआ में 48 बरिस के 48 ओं के श्रीमती आशा रेणुका मारी मुतु पैदाशी नाम नीलाम्बा और जिनकरा सबको मीला नाम से जस्ती जाना टोलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज सपहर के 3 बजे उनकर पिता जियनलाल नीलाम्बा के घरे नंबर एस 31 सीते रोशबुआ से उठावल जाए और रोशबुआवे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे 8:30 PM
خیستلین تیا خوش می پیسه تب

0: Parisque 65 ans qui chez Pumalei Manaru chez Pumalei Manaru jinkara sabko Malay masoon naam se jasti jana challenge guzar kar hawan unkar matiya aaj se pehar ki 3 baje unkar ghar ek Christelle netia rouge se uthaval jaye arvali de pret ki samsan bhumi le javal jaye cremation today at 3 pm ब्लॉक डी ए एनएचडीसी मापू में 64 बरिस के 64 ओं के श्रीमती जयवंती रावा पैदाशी नाम दो मार जिनका सब कोई विश्वानी नाम से जस्टी जनरल जागुसर कर हवन इनकर माती आज दिन के 2 बजे आज दिन के 2 बजे इनकर पति रतन रावा के घरे ब्लॉक डी एक एनएचडीसी मापू से उठावल जाए और थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टूडे एट 2 PM नंबर 13 डॉक्टर मोबले बुबासा में 90 बरिस के 90 ओं के श्रीमती दयवंती पदारत श्रीमती दयवंती पदारत पैदाशी नाम रामचरण अर्जुन करा सबके चंदा नाम से जस्ती जनरल जागुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 12 बजे आज दिन के 12 बजे उनकर घरे नंबर 13 डॉक्टर मोबले बुबासा से उठावल जाए और कॉल व्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट नून शुग्रस्त परिवार के प्रति हमने के सहानुभूति बातें
1: ...819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओं, 8:20 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपके लाए हैं सुबह का नज़ाना के दूसरे हिस्से, और इस हिस्से में चंद बेस्ट गाने आपके लिए हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, जुड़े रहे हमारे साथ और हम कहेंगे आज का दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा तराना जो है आपके नाम हम करने वाले हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आप सुन सकेंगे अलका।

निक और साधना सरगम की मीठी आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत सा तराना जो है आपके नाम हम कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। और गुरुवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी बस यही कामना है। तो चलिए हम गीत की ओर बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है आप सभी सुनने वालों के नाम।

तो चलिए श्रोताओं, आशा भोंसले किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म हर जाय से लिया गया। तो चलिए अगले डुएट की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा और इस फिल्म से लिया गया ये शीर्षक गीत आपके लिए किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में।

श्रोताओ, जिंदगी भी खट्टे मीठे स्वादों का संगम है। कभी खुशियों की मिठास मिलती है तो कभी अनुभवों की खटास हमें कुछ सिखा जाती है। तो चलिए, आपके लाए हैं चंद डुएट्स गाने आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, ये अगला गीत फिल्म का नाम है बड़े दिलवाला, और ये अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के मीठी आवाज़ों में।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम हम कर रहे हैं इस समय। सदाबहार गीत, चंद पुराने गाने और एक ऐसा गीत है जो है आपको ज़रूर याद होगा, बहुत ही पॉपुलर मूवी सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, और इस फिल्म से लिया गया ये बहुत ही पॉपुलर गीत हम आपके नाम करेंगे मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की मीठी आवाज़ों में। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे और इस गीत को आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाए हमारे साथ और आप अपनी यादों को भी ताज़ा कीजिए।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। एक रास्ता दो राही, बस बहुत ही खूबसूरत संगीत है मोहम्मद रफी किशोर कुमार की मीठी आवाजों में। 8:45 हो चुके हैं, इस वीडियो की घड़ी में चंद डुएट गाने इस समय आप सुन रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए, प्यार भरे मैसेजेस के लिए, हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।

0: तो चलिए श्रोताओं, रिश्ता वही खूबसूरत है जिसमें प्यार और सम्मान सच्चा हो। तो 8:50 हो चुके हैं और अभी आप सुन रहे थे चंद डुएट्स गाने। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। आइए सुनते हैं हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। आज 1 अक्टूबर है, एगो बहुत बड़ा दिन है हमने के देश के, हमने के इस दुनिया के चलता फिरता आर्काइव्स लोग खातिर। और हमने के चलता फिरता आर्शिव, लाइब्रेरी, पुस्तकालय के रही सिवाय हमने के बुजुर्ग लोग के। 1 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनावल जाला। हमने के बुजुर्ग हमने के घर परिवार समाज के पहला पुस्तक हवन जा। ये पुस्तक के हर एगो पन्ना पर अनुभव के कहानी लिखल गल बा। ये बरिस 2026 के ई दिन खातिर यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सुंदर एगो विषय रखले बा, और उ है लंबा आयु लंबा जीवन खातिर व्यवस्था और फिर से विचार। आज इंसान आगे के समय से और जस्ती लंबा समय तक जियत हवन सा। 2050 तक दुनिया में 60 बरिस से ऊपरे होला लोग की संख्या 2 करोड़ से भी जस्ती हो जाए। ये एगो बड़ा उपलब्धि है, लेकिन एगो बड़ा सवाल भी बाय कर संगे संगे। सवाल ये है कि हमने के व्यवस्था, हमने के सिस्टम, हमने के सेहत, हमने के नौकरी, हमने के

0: टेंशन हमनी के घर का ये लंबा जीवन खातिर ई सब तैयार हवन सा। ई बरिस के थीम यही सिखावेला कि बुढ़ापा बोझ नहीं है, बुढ़ापा एगो अवसर है, जरूरत बा खाली सोच के बदले के। हमनी के दादा दादी नाना नानी लोग के खाली दवाई के ही नहीं बल्कि हमनी के सम्मान के जरूरत बा। ई लोग के खाली देखभाल नहीं भागीदारी चाहेला, उ लोग के एगो कोना में नहीं फैसला के बीच में चाही जगह देवे के। तो आज वृद्धजन दिवस पर आवा वादा करी जा कि अपन बुजुर्ग के अकेला नहीं छोड़ब जा, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के खाली उ लोग के संगे बैठब जा, उ लोग के सुनब जा। कहे कि जब तक हमनी के बुजुर्ग मुस्कुराइन जा तब तक हमनी के काल सुरक्षित रही। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद सब कोई के। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे और इसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम आप अनुराधा के साथ सुन सकेंगे। तो आइए आपके लिए एक भोजपुरी गीत लाए हैं। 10 बजे हम मिलेंगे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: सुबह के 9 बज चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में आप पूजा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार अनुराधा।

सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक वर्ष में वेतन में 6.2% की वृद्धि हुई है। विदेशी कामगारों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च 2026 में लगभग 310,000 कर्मचारी

कर्मचारी कार्यरत थे। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान सरकार की आय और खर्च का क्या हाल रहा है? स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये लगभग 170 बिलियन रुपए से बढ़कर 197 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। स्टेट

के पद से हटाए जाने की सूचना दी। नए बोर्ड की संरचना को कल शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। मॉरिशस में लगभग 2,76,000 लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। ये दिन हमें बुजुर्गों को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे लोगों के रूप में जो अपना अनुभव, ज्ञान कौशल और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा अगली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुबई से तेल अवीव जा रही एक उड़ान के दौरान दूसरे पायलट पर चाकू से हमला करने और कथित तौर पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश में एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने हमलावर को काबू कर लिया और फ्लाई दुबई विमान का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में ले लिया। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।

आप सभी को नमस्कार, और इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, और मैं एक बार फिर आपके समक्ष आई हूँ भी हूँ। तो और हमारे साथ जो है तकनीकी साथी है फैजन नोटाली, प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा, और जिनेश द्वारा निर्मित ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि आज का जो विषय है एकदम ही सराहनीय विषय है, एकदम ही मतलब बहुत ही अच्छा विषय है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग, जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, बेझिझक हमारा साथ दें। इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अपनी राय, अपने अपना संदेश आप दे सकते हैं, या जो भी प्रश्न है आपके पास, बेझिझक 4028085 पर आप हमें फ़ोन करें। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना, उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और हम में से हर व्यक्ति एक दिन उस पड़ाव पर तक पहुँचेगा, ये तो जाहिर है। और आज तो 1 अक्टूबर है, हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, और ये दिन हमें अपने समाज के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, उनके अधिकारों, उनकी गरिमा और उनकी आवश्यकताओं पर विचार करने का अवसर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे अनुभव और हमारी विरासत के वाहक हैं, पर यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या हमारा समाज वास्तव में उन्हें वो सम्मान, समय, सुरक्षा और अपनापन दे पा रहा है जिसके वे हकदार हैं? तो इन्हें सवालों पर, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग ज़रूर भाग लेंगे। और हमारे जो दो अतिथि हैं, एक श्रीमती अनीता गोविंद जी हैं और श्री हेमंत राम गोविंद जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित

0: है। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग आए हुए हैं। आप दोनों समाज सुधारक हम कह सकते हैं। तो इस विषय जो अभी हमने कहा कि आज 1 अक्टूबर जो है हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अनिता जी, हम आपसे ये सबसे पहले पूछेंगे, जो वृद्धावस्था ये शब्द है, आपके लिए क्या क्या आपके सामने क्या आता है, क्या ये इसका मतलब क्या है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी कि आपने हमें आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। एक तो हम समाज सुधारक नहीं हैं मगर समाज सेवक हैं।
0: सेवक और सुधारक,
1: सुधारक हम वैसे सुधारक तो नहीं बन सकते, कोशिश कर सकते हैं।
0: ये तो आपका बरपन है जो आप ये कह रहे हैं कि आप उसको सेवा के रूप में हैं और सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं।
1: अनुराधा जी, ऐसा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो एक न एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, हम इससे भाग तो नहीं सकते। ये तो प्रकृति का नियम है, जन्म लिए, बड़े हुए, जवान हुए, फिर इसके बाद हमें बुढ़ापा का सामना तो करना ही पड़ेगा। मगर मेरे ख्याल से सबसे सुंदर ये अवस्था जो है ये बुढ़ापा ही है, क्योंकि जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास इतने सारे अनुभव हो जाते हैं, तब बुढ़ापे में आप समझ पा सकते हैं कि जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है, और तभी आपको महसूस होता है कि किस उद्देश्य से आप इस संसार में आए और आप क्या कुछ कर पाए संसार में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए।
0: और भाई हेमंत जी, आपके नज़रिया में जो वृद्धावस्था ये कौन सी है? सब कबो कबो हमने बोलिया जा कि जो वृद्धावस्था जो है कब ऐसे सुनने जा कि ये एक श्राप है, ये अभिशाप है, ये कहाँ तक सच है?
2: वृद्धावस्था हम बोला एगो एगो आशीर्वाद है भगवान के, कि आप अभी वृद्ध हो गल, अभी जीते हो। कैसे बोलते हैं, एक कहावत है, जान है तो जहान है, क्योंकि कितने लोग छोड़ कर चले गए,
0: हाँ
2: आप यहीं तक है। मैं बहन जी से बहुत सहमत हूँ, अब उन्हें कहा दिस इज अ गोल्डन पीरियड, द गोल्डन एज। मुझे याद आता है हमेशा चिनोगोशी का, चिनोगोशी 1980s में 79-80 में एक गाना गाया था, लावी कोमा सा स्वासंतों, क्योंकि जब इतना साल हो गया, इतना साल आपने जी लिए, तो उतना मतलब टेंशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपके पीछे आपका परिवार है, आपके पीछे आपका करियर है,
0: तब अब जिएंगे।
2: पीछे आपका, आपका पीछे आपका वो, हाँ वही, इन द सेम लाइन ऑफ थिंकिंग, आपका कैसे आपका अनुभव है। ओके, जब जवान जवानी में सोचते थे कैसे मेरा वो घर बनेगा, किससे मैं शादी करूँगा, कितना बच्चे होंगे, मेरे करियर का क्या होगा, इस तो सब हो गया। अभी तो एकदम कैसे बोलते हैं, ढीठ हो गए हुए, विद एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ,
1: यू आर फुली प्रिपेयर्ड,
2: या फुली प्रिपेयर्ड, एंड देन यू नो व्हेन टू लेट गो, कब जाने देना, और आपके यहाँ सब समय आपके हाथ में है, यू आर फ्री। जितना ये जितना इच्छा था वो पूरा करने के लिए, तो आपके पास समय है, द चॉइस इज योर्स।
0: जैसे कि अनिता जी ने बोला, बहुत ही सुंदर पढ़ा
2: आपने, एग्जैक्टली, और आपके अनुभव है पीछे, और आप इस अनुभव से बहुत कुछ जीवन में सीख लिए।
0: अच्छा, ये जो 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाते हैं, क्या सचमुच इतनी ज़रूरी है?
1: बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। देखिए क्या होता है कि सभी कुछ हम ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, मगर ये ग्रांटेड नहीं है। यहाँ पर हम ये समझाने की का प्रयत्न किया जा रहा है कि ये जो दिवस है हमको याद दिलाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग है। जैसे भाई जी ने कहा, अगर मान लिया जाए किसी की मृत्यु हो गई तो वो तो उस स्तर पर नहीं आ पाएगा, वो तो चला गया, मगर अगर हम जिंदा है, हमारे दिल धड़क रहा है, तो इसका मतलब है कि हम समाज में है, अपने परिवार में है। तो अगर कम से कम साल में एक बार, ये परिवार तो याद करते हैं प्रतिरोज, मगर जितने वैसे दुनिया के लोग हैं, और उनको याद, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि आज एक खास दिन

0: है जो हम वृद्ध लोगों के लिए मना रहे हैं। मगर यहाँ पर अनुराधा जी, मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि ये जो वृद्ध अवस्था है ना, ये कभी कभी कम लोग सोचते हैं, ये इसके जब हम वृद्ध तक पहुँच जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह, मगर ज़्यादातर क्या होता है, हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
1: वो कैसे?
0: देखिए क्या होता है, एक तो जब हम जवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सब कुछ ठीक चलता है, हम कमा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, हम जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर एक ऐसा समय आता है जब, वैसे 100% नहीं मगर कुछ प्रतिशत तक हम अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं, समाज पर निर्भर करते हैं,
1: कुछ प्रतिशत जैसे आपने कहा, सभी लोग
0: 100% नहीं। क्या होता है जब एक इंसान बीमार होता है, ये तो है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, बहुत स्वस्थ है, मगर काफ़ी लोगों में आप देखेंगे कुछ बीमारी है या कुछ परेशानी है, तो ये होता है, वो कहते हैं कि इट इज़ ए गोल्डन एज, मगर वो गोल्डन एज है, पर जो भुगत रहा है अपने बुढ़ापे को वो खुद जानता है कि किस स्थिति में है। और जब अगर इस समय, बाद में मेरे ख्याल से आप इस पर बात करेंगे, अगर हमारे पास, हमारे साथ इर्द गिर्द में कोई ऐसे लोग हैं जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ दे सके, तब तो वो तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना।
1: जब परेशानी समस्या की बात कर रही हैं, हमारे भी जो बुजुर्ग हैं, लोग की कौन कौन समस्या होता?
2: देखिए हाई बुजुर्ग लोग के एक वो चीज छाना एक्सेप्ट होगी कि देखो एक नया गाड़ी खरीदोगे, 7 साल के बाद आपको फिटनेस जाना पड़ेगा। अभी आपको 60 साल हो गया तो जरूर कुछ ना कुछ, वो तो आपके शरीर तो बुढ़ापा आएगा उसमें। कहते हैं कि डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ, दिस इज ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सच, बहन जी ने सच कही बहुत, कि बुढ़ापा के समय में वो हेल्थ इश्यूज आता है, जाबेद तौशों मना लिखे ये सब होता है, लेकिन हम उसके साथ हमें जीना चाहिए। एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ, देखो 1750 में इंग्लैंड में जब कोई जन्म लेता था एक पुरुष, तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 33-34 ईयर्स था, वीमेन का 38 ईयर्स, उसके बाद वो मर जाते थे। मॉरिशस में 1950 में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 60 ईयर्स वो जीते थे, 60 ईयर्स लेडीज, 55 मैन। अभी मैंने ये फिगर्स देखा है मॉरिशस के बारे में, वीमेन अबव 75 और मैन अराउंड 70, मतलब क्या है, हम ज़्यादा जीते हैं, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि सिर्फ दवाई के कारण नहीं, हमारा जो लिविंग कंडीशंस है, हाँ, लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशंस, सुविधा, क्लीनलीनेस, पानी, अच्छी पानी, ये हेल्थ सर्विसेज, सब कुछ लेकर तो हम ज़्यादा जीते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक लुकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हाफ फुल हाफ एम्प्टी, उसमें संतोष ही लाना चाहिए, संतोष लाना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो सच्चाई है जीवन का, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, बाकी नहीं। तो समस्या आएगा, बहुत से समस्या आएगा, पारिवारिक समस्या आएगा, पैसा का समस्या आएगा, पैसा कम मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या आएगा, और ओल्ड एज में डिप्रेशन हो जाएगा, कैसे सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जैसे तभी मैंने कहा, अगर आपके पास 10 रुपये है तो 11 रुपये नहीं खर्च करना चाहिए, 10 ही रुपये के बारे में सोचना चाहिए, और हमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट हैं तो जीवन, ये आप पर निर्भर है, अगर आप खुश होना चाहते हैं, वो तो दैट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, तो खुश हो सकते हैं।
1: अच्छा, हमने के देश मॉरिस में बुजुर्ग लोग के प्रति कितना सहायता
2: को बात बोला, हम हमेशा मॉरिस के बराए करीला, खाली हम नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लोग, दुनिया के लीडर्स लोग बड़ाई करेगा, इतना छोटा टापू बा हमने के, सोना नहीं बा, चांदी नहीं बा, पिथोल नहीं बा, कुछ नहीं बा, सब के पहुँचों मिलेगा। हमने के एगो सिस्टम आ प्रोटेक्शन देखा हमने बुजुर्ग लोग खातिर एगो लालवा सरकार पास करे रहा 2005 में 2005 एल्डरली प्रोटेक्शन एक्ट तब यह बोल जा

0: एगो यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1990 में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली वो डिक्लेयर हुआ था 1st अक्टूबर 1990। तो उसके बाद मॉरिशस में बहुत से डेवलपमेंट हुआ, इतना ही डेवलपमेंट हुआ, हम लिखे फैमिली अफेक्ट हुआ, फैमिली कैसे अफेक्ट क्यों हुआ, चाइल्ड अब्यूज से, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1994 में, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1997, उसके बाद बुजुर्ग के प्रोटेजे के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एल्डरली एक्ट 2006 में वो पोकला में होलबा तो ये लालवा बहुत सिवे है, ढेर कोई नहीं जाने रहा, एगो बूढ़ा एगो एगो वृद्ध जन ओके लौकिक ही कोई ओके अब्यूजे करा था पैसा के बारे में कि ओके मातृत्व करा था उसकी
1: NC2 9 4 1
0: और मजिस्ट्रा सके रेस्पोंडेंट जन करा था ओके दुख दुखी करा था ओके सकी मजिस्ट्रा के ऑर्डर देवे कि ऐसे ऐसे नहीं करबे था तो के हम सकेला जेल हो लमान खूब बड़ा है। तो ये सब प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन बहुत है और बहुत से देश में इतना पेंशन ये प्रोटेक्शन ये और अभी तक कुछ भी आप कहेंगे हमारा जो परिवार का जो टिश्यू है टिश्यू फैमिलिया बहुत स्ट्रांग है अभी तक।
2: मैं ये कहना चाहूँगी बहुत आपने बहुत काफ़ी जानकारी दी। देखिए क्या होता है ये तो सरकार की ओर से अगर जितने भी आज हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है। क्या होता है कि अब मान लिया जाए जवानी में आपने बहुत अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, जब एक ऐसे उम्र आ गया तो आप बाहर का खाना खाते हो, आप योगासन के बारे में सोचते भी नहीं हो, या जैसे जैसे बहुत ही गलत रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो तो इसका असर बाद में बुढ़ापे पर ज़रूर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये आजकल तो हम इस पर बहुत बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हर व्यक्ति का ये हम किसी चीज़ को भी ग्रांटेड नहीं लेंगे क्योंकि क्या होता है कि ये जो जीवन है एक ही बार मिलता है और अगर हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को हम संभाल कर रखें, अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखें और अच्छी वैसे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अनुराधा जी कि जब मान लिया जाए 60 साल रिटायर हो गए हैं तो वे लोग सोचते हैं तो मेरा जीवन तो ख़त्म हो गया
1: जो नहीं है
2: नहीं बिल्कुल भी नहीं। भाई जी ने कहा कि जीवन 60 साल के बाद ही शुरू होता है ना, आपने कहा तो ये बहुत सही बात है क्योंकि इतने सालों तक आपने क्या किया, बच्चों की देखभाल की, पढ़ाई लिखाई में अपना जीवन व्यस्त किया, आपने बहुत बड़ा शानदार मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, ये सब किया आपने, इसलिए किया ताकि बाद में जब बूढ़ा हो जाए बुढ़ापा आ जाए तो कम से कम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो आशा और निराशा में एकदम हमारे बड़े बुजुर्ग दब कर रह गए हैं। आशा क्या है कि हाँ मैंने बच्चे को बढ़ाया लिखाया, उसको बड़ा आदमी बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, तो एक ना एक दिन यही आशा के साथ मैं जीऊंगा कि मेरा देखभाल तो जरूर करेगा। नहीं, ये आशा रखना ही नहीं चाहिए। वो जो आशा रख रहे हैं वही आशा निराशा में बदल जाएगा क्योंकि आप अपने अपना जीवन आप जब संसार में आए आप अकेले आए थे, न बच्चों के साथ, न परिवार के साथ, किसी के साथ आप नहीं आए, ये आपका जीवन है, आपकी ज़िंदगी है। ये कभी होता है कि जितना मैंने कुछ कमाया तो मैं सभी बच्चों के नाम पर रख दूँ, बच्चों को ये दे दूँ, बच्चों को वो दे दूँ, क्योंकि नहीं एक दिन होगा जब वो मेरे बारे में सोचेंगे। आज मैं मुझे क्षमा कीजिएगा, आज बच्चों के पास समय नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। ये मैं नहीं कहती कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वो देखभाल करते हैं, मगर ये है एक तो आप तो अलग अलग रखते हैं, उसका अपना घर है, वो बड़े बुजुर्गों का अपना घर है, बच्चों का अपना घर है, आएगा सब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आपको देख कर चला जाएगा।
1: इसी पर हम पूछेंगे अब थोड़ा परिवार और रिश्ते पर जुड़ा प्रश्न, आगे जो संयुक्त परिवार

0: संयुक्त माने कि सब कोई, अब तक छोटा छोटा परिवार, ये गलत है क्या? ये गलत है?
1: नहीं, गलत तो नहीं है, मैं कहूँगी गलत नहीं है और गलत भी है, दोनों है,
0: दोनों है।
1: क्योंकि देखिए क्या होता है, आज हम तुलना नहीं कर सकते हैं, हम जवान तो नहीं है, हम भी बुजुर्ग बन गए हैं, तो हमारा जो जीने का वो जिस प्रकार से हम जीते थे पहले, आज हमारे नौजवान उस प्रकार की ज़िंदगी नहीं व्यतीत करते हैं।
0: वो तो है,
1: है ना। उस समय हम जब शादी करके जाते थे तो हमें सिखाया जाता था, ये तुम्हारा सास ससुर है, ये तुम्हारे देवर है, ननद है, कोई भी तुम्हारी, जब तुमने शादी की, ये हमें सिखाया जाता है भाई जी कि देख, पहली बात जब तुमने इस परिवार में शादी की, तुमने लड़के के साथ शादी नहीं की, पूरे परिवार के साथ शादी की, है ना। दूसरी बात, जब शादी करके जा रही हो, तुम्हारी अर्थी ही उस घर से उतरे निकलेगी, हमें ये सिखाया जाता है। और हम तो कर्तव्य पालक थे, हम तो पालन करते थे, और हमारा जो संस्कार था, जिस प्रकार से हमारी अपब्रिंगिंग होती थी, लालन पोषण, वो अलग तरीके से किए जाते थे।
0: तो इस पर भाई जी आप क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: अभी कल परसों एक रिसर्च में देख रहा था, बहुत बड़े रिसर्चर्स द्वारा, तो उन्होंने ये देखा कि एक सबसे बड़ी खुशी के समय जो है बुज़ुर्ग में, वो जब अपने नाती के साथ रहते हैं, नाती पोता के साथ रहते हैं। दिस हैज बीन प्रूवन बाय रिसर्च, इतना उसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि उनका वो जो एजिंग प्रोसेस है ब्रेन का, वो बहुत कम हो जाता है और एकदम खुशी से जीते हैं। हमने बात की संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमारे संस्कृति में न्यूक्लियर फैमिली कभी नहीं है। अभी जैसे जा रहा है दुनिया के समय में, अभी हमें, मुझे एटलीस्ट, मुझे ऐसा, एज ए सोशियोलॉजिस्ट,
0: तो कैसे आजकल के हमने जो बुजुर्ग, हम आज के पीढ़ी के साथ अपन ढाल दें?
2: नहीं, हम आपसे बोला था, जैसे समय आवा था हमने के परी गते गते वापस एक्सटेंडेड फैमिली में आवे के, क्योंकि अगर मैं बहुत बहन जी अच्छा बोलन, हाफ वे उनका लाभांतास है, डिजावांतास है। अभी के समय, अभी लौकत आवेशस बोला था कि जौन लड़का लोग एक्सटेंडेड फैमिली में, वो लोग के सोशलाइजेशन, वो लोग बड़ा होलन जा, वो लोग के वैल्यू सिस्टम एकदम डिफरेंट, और जौन न्यूक्लियर फैमिली में, वो लोग के वैल्यू सिस्टम वेरी वेरी डिफरेंट। न्यूक्लियर फैमिली उन औसन परिवार में देखभाल ज़्यादा सेल्फिश इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लेकिन वो जो संयुक्त परिवार है उसमें उनका वो बड़े लोग के ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उनके पर्सनालिटी दूसरा है। लेकिन क्या है कि अभी का समय जैसे हम पिछले एक प्रोग्राम में किया था, पीपल आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, वो खुद को देखते हैं। तो वापस जब मैं आऊँगा इस विषय पर, अभी कोई बुजुर्ग है तो उसको एकदम, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, पैसा के बारे में, केयर के बारे में, अनलेस यू आर डिसेबल्ड, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हमको बुजुर्ग लोगों को मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ्स। कैसे हम टेक कंट्रोल ऑफ द लाइफ्स ऑफ योर लाइफ्स? एक बहुत बड़ा फिलोसोफर कहता था, आप मरना चाहते हैं जल्दी से, दिन भर बैठे रहो। आप जीना चाहते हैं, मूवमेंट करो, और बहुत से ऐसे चूज है, अब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, संबंध अपना दोस्तों से, मित्रों से, वो कनेक्शन जारी रखें, मिल जुल कर, आप बाहर निकलो, घर में सिर्फ टेलीविजन के आगे ही सब। तो ये योग प्राणायाम, अभी के समय में टीवी द्वारा, इंटरनेट द्वारा बहुत से कुछ है जिससे हम ज्ञान हो, ज्ञान लेकर अपना जीवन में उतारें। तो बहुत फर्क होगा अगर ऐसा डिसिप्लिन, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अभी के बच्चे लोग अभी पैसे, पहले के समय में सोचते थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है मेरा, वो नहीं है अभी।
0: तो इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए हम रोक रहे, थोड़ी ही देर में हम लोग हमारे बुजुर्ग को किस तरह से उन लोगों के जीवन को खुशहाल जीवन बनाएं, थोड़ी ही देर पर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी एक ब्रेक लेते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे दो मेहमान हैं श्रीमती अनिता गोबिंद जी और श्री हेमंत राम गोबिंद जी। और हमारा जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर, तो जितना मतलब सोशल सपोर्ट हमने के बुजुर्ग लोग के मिलेला ये बहुत आवश्यक है, जैसे अब जी हमने बोली जा। अब आप दोनों के देखे में हमने के जन बुजुर्ग जन है उन लोग के जीवन के कैसे खुशहाल बनाए के चाहेला?
2: खुशहाल बनाने के लिए बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हमारे बड़े बुजुर्ग। जैसे भाई जी ने कहा कि हमारे नाती पोते के साथ अगर हम जीवन व्यतीत करें तो ये तो सोने पर सुहागा बन जाता है। क्या होता है कि हम अपेक्षा ना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी चीज़ पर। जैसे ज़िंदगी जा रही है उसको आप ऐसे ही जाने दीजिए, पर सबसे बड़ी बात आप अपने बारे में सोचिए। बच्चे तो है, और कभी हम गलत धारणा से आगे बढ़ते हैं कि हमारे बच्चे हमें हमसे प्रेम नहीं करते, हमारे बच्चे हमें अपना नहीं मानते। ये जब इन सब सोच के बारे में हम जिएंगे तो हम बहुत दुखी रहेंगे। क्यों? जैसे मैंने कहा पहले कि हमारा जो जीवन था पहले वो अलग था,

0: हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से हम जीवन व्यतीत करते थे, आज अलग है क्योंकि वे बहुत व्यस्त होते हैं। दे आर सो कैरियर ओरिएंटेड, हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर अपने नौकरी के बारे में, अपने कार्य के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में। वैसे वो जिस प्रकार से आपने प्रगति की, जहाँ तक आपने प्रगति की उतना ही प्रगति बच्चे भी करना चाहते हैं, जहाँ तक हो सके हमने कुछ दिया भी हो मगर उससे वो दुगना करना चाहते हैं, दुगनी प्रगति करना चाहते हैं। तो हमें अगर हम बैठकर सोचते रहे कि मेरा बेटा मुझसे तो प्यार ही नहीं करता, मेरी बेटी तो मेरे बारे में सोचती ही नहीं, मुझे ये नहीं देता, वो नहीं देता, ये नहीं। मगर जब तक आप कंप्लेन करेंगे जीवन में, क्योंकि देखिए अभी तो एक ऐसा समय आ गया है जहाँ समझदारी से काम लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमने नौकरी की, हमारे पास आमदनी है, पैसे हैं, हम डॉक्टर के यहाँ हम जा सकते हैं। ये ऐसा कोई बच्चा बहुत कम होते हैं, मंगमान या जब बीमार है कि वे लोग आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाएंगे, जहाँ तक वो पूरी कोशिश करते हैं आपके बारे में। मगर ये है कि हम ये इंतज़ार करते हैं कब कि मेरा बेटा आकर मेरे साथ एक घंटे दो घंटे पूरा दिन बैठे मेरे साथ, या बेटी अपने घर परिवार छोड़कर मेरे यहाँ आकर मेरे जितनों घर का काम है वो करे। ये नामुमकिन है, हमें इन बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और ये हम अपने बच्चों के लिए तो नहीं जी रहे ना, हमने जिए थे अपने बच्चों के लिए, हम अपने लिए जी रहे हैं। आज तो समाज में इतने सारी गतिविधियां हैं, हम आउटिंग पे जा सकते हैं, ये तो आज हम आज के लिए कितने वो बाहर जाते हैं, वो खाते पीते मौज उड़ाते हैं। तो यू हैव टू जॉइन इट, क्योंकि आपने तो जिंदगी आप बच्चे के लिए आपने जी ली, आप अपने लिए जियो भैया। अब इतने कभी मैं रेडियो द्वारा सुनती हूँ, हमारे जब हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जी वो लोग भाग लेते हैं ना, इतनी खुशी होती है। कभी छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, कभी कहानी सुनाते हैं, कभी गीत गाते हैं। तो यही तो यही जिंदगी है।
1: अगर आप रखने के लिए,
0: अगर आप ऐसा जियेंगे ना, अगर आपको 65 साल तक जीना था तो आप 80 साल तक जिएंगे, क्योंकि आपने अपना ये जो लाइफ स्टाइल है उसको बदल कर आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं,
1: आत्मविश्वास
0: अगर उसको आप आत्मविश्वास को दृढ़ता से लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मगर जैसे ये जो आशा निराशा, निराशा आप मत रखिए, ना आशा रखिए ना निराशा रखिए। आपने अपना कर्तव्य निभाया है ना, मगर आप बच्चों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते।
1: और बच्चे लोग जस्ती हई बोलेला कि हमने के समय नहीं मिलेला, हमने के नहीं सक सब इस पर कुछ बोल पापा जी।
2: हम एक बात बोला, सब सबको यहाँ 24 घंटा है, कोई यहाँ एक मिनट जस्ती नहीं, एक मिनट कमती नहीं। हम नहीं बोला था कि श्रवण कुमार जैसे उनका खिस्सा रामायण में अवश्य जिए के, और श्रवण कुमार जी के उनका फोटो सब पहले के घर में, सभी घर में था वो, कैसे दैट इज़ अ आइडियल, कैसे माता पिता के का सेवा करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी ये मेरे पर निर्भर है, मैं एक बेटा हूँ या बेटी हूँ या दामाद हूँ, मुझे थोड़ा सा समय निकाल कर उनको जाकर देखना चाहिए, सो दैट यू आर कनेक्टेड। ये कनेक्शन होगा तो वो खुश रहेंगे। ये एक देखिए हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, जो संस्कार है, ये बदलता नहीं समय से। हम हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, वैल्यू सिस्टम मतलब मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यू कैनॉट इरेज दिस, ये सत्य है। ये और भी एक सत्य है कि उनको बहुत से प्रेशर है अचीव करने का, क्योंकि बिना कुछ किए हुए कुछ नहीं मिलता है जीवन में, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जैसे बहन जी ने कहा अभी कि आपने बहुत एफर्ट किए, वो हार्ड वर्क किए और घर बनाए, गाड़ी खरीदे, तो उसका उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आप में उतना संतुष्टता लाना चाहिए, और बच्चों का भी, बच्चों लोगों का भी, उनको भी संतुष्ट लाना चाहिए, उनको भी संतुष्ट होना चाहिए पेरेंट्स से। दे कैन नॉट कंप्लेन कि ये नहीं किया मेरे पिताजी ने, आप कीजिए, आप जो प्रोफेशनल है या आप काम करते हैं, आपके समय है अभी, आप तो जवान है तो आप भी कुछ कीजिए। अगर दोनों के साथ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
1: तो अगर हम लोग कहेंगे कि हम बच्चों के कर्तव्य क्या है,
0: बच्चों के कर्तव्य तो बहुत है। उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब माता पिता ने आपको जन्म दिए और उन लोगों उन्होंने दुख सह के, कष्ट सह के आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी की, बड़े बड़े औहदे पर

0: तो आपको बिठाया, तो कम से कम आपका कर्तव्य, देखिए ये छोटी सी बात लोग बच्चे नहीं सोचते कभी कभी है कि वे उन लोगों को तो करना ही था, उन लोगों का कर्तव्य था करना, नहीं
1: नहीं नहीं।
0: कितने ऐसे परिवार होते हैं जो अन्य कौम के लोग में होते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते भी नहीं है। तो हम हिंदुओं में ये बात है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचाना चाहते हैं। अगर माता पिता ने आपके लिए कुछ नहीं किया होता तो आप कहीं पर लेबरर होते या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे होते, मगर यहाँ पर बन जाता है अधिकार जमाने से पहले आपको अपना कर्तव्य निभाना है। और आपका कर्तव्य क्या बनता है कि कम से कम आप उन छोटे समय उस समय के बारे में याद करें जब आपके परिवार ने इतना कष्ट झेल कर, आपको पता है भाई जी पहले ज़माने में कितने कष्ट झेल कर वो लोग काम करते थे, जाकर धूप में काम करते थे, कितनी कठिनाइयों के साथ एक छोटा मकान बनाते थे, बच्चों को सबसे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन देना चाहते थे, ताकि इसलिए तो आप देखेंगे आज हमारे देश में इतने सारे वकील हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे अध्यापक हैं, ये सब हैं। तो अगर आप लोगों को ये पढ़ाई या एजुकेशन नहीं दिए जाते तो वहाँ पर नहीं होते। तो कम से कम इतना तो सोच लीजिए, अगर ये मेरे माता पिता नहीं करते ये सब मेरे लिए तो मैं आज कहाँ पे होता। तो अब मेरा कर्तव्य बन जाता है, मेरा धर्म बन जाता है। ये तो हमें ये जो होता है ना संस्कार हमारा, अगर हम संस्कारिक है, अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें माता पिता ने संस्कारिक बनाया है तो इतना तो हमें सोचना चाहिए कम से कम मैं जाकर देखूँ मेरे माता पिता किस अवस्था में जी रहे हैं, उन लोगों की किस चीज़ की कमी है। जब हम कहते हैं चीज़ों की कमी, ये ज़रूरी नहीं कि पैसों की कमी, अगर हमारे बच्चे आकर बात करते वो जो सम्मान चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, रिस्पेक्ट चाहते हैं ठीक तरह से। आजकल बच्चे कभी आपसे माता पिता से बात करते हैं ना, माता पिता खुद डर जाते हैं आकर, जैसे बहुत गलत तरीके से, हाँ आपको ये करना चाहिए, नहीं प्यार से कहते, कभी मैं इसको कहते हैं बच्चा बुजुर्ग जो है बच्चा बन जाता है, नहीं बच्चा नहीं बन जाता मगर वो इस प्यार प्रेम के प्यासे होते हैं। दे वॉन्ट लाइक वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आकर दो मिनट के लिए कुछ प्यार की बातें करें। या देखिए ये ज़रूरी है, हम बैठ कर ये अगर मैं मांग करूंगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उनके बच्चे आकर वे अपने बुजुर्ग जो होते हैं अपने बच्चों को अपनी पुरानी कहानियां सुनाएं, बीती बातों की जो कहानियां, कैसे उन्होंने कष्ट झेल कर या बचपन में कैसे खेलते थे, किन किन चीज़ों के इसके साथ खेलते थे, किस प्रकार से बैठना उठना, अब ये ज़रूरी है, जोक सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, बड़े को हंसाओ, और बड़ों का हंसना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, अगर आप बैठ कर बच्चों को, या ऐसा भी कर सकते हैं कहते हैं कि आप लोग खाना मत बनाओ, हम बनाकर घर से लाएंगे, आप साथ बैठ कर खाएंगे, या आज गाड़ी में सभी आ जाओ, गाड़ी में हम जाते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। तो उन लोगों को महसूस कराना चाहिए कि दे आर स्टिल अलाइव, दे अभी जिंदा है, और बच्चों को ये महसूस कराना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों को कि हम आप लोगों के साथ है, सरकार है, कोई भी है, समाज है, मगर वी आर योर किड्स, हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें जन्म दिया, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं आप लोगों ने क्या किया, तो ये हम उसको वैसे उसको लौटा तो नहीं सकते ना, जो कुछ उन्होंने अपना अपना जो कुछ किया है कर्तव्य उसको लौटा नहीं सकते, मगर कम से कम मैं 100% नहीं कहूँगी, 10% अगर आप उसको लौटा सकते हैं दूसरे तरीके में, कम से कम यू केयर फॉर योर एल्डर्स, ये सबसे प्रमुख बात है।
2: मैं समझती हूँ जैसे बच्चे लोग वो लोग जा करके वो लोग भी परेशान होते हैं कभी कभी अपने घर में, वो लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन जा करके अपने बुजुर्ग माता पिता को ना बताएं, लेकिन उनके साथ खुशहाल मतलब समय बिताएं, जैसे खाना, जैसे अभी अनिता जी ने बताया, आपकी क्या राय है?
1: ओ सही है, देखिए जीवन बहुत अनमोल है सभी के लिए, पैसा कमाना चाहिए लेकिन ये जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर कोई बुजुर्ग को देखेंगे तो उनके देखेंगे उनका शरीर पुराना हो गया है, ओल्ड बॉडी, लेकिन उनमें कितना एक्सपीरियंस है,
2: वही अनुभव,
1: कितना अनुभव

0: है जो ये जवानों को उन उनके फ़ायदा के लिए वो जी सकते हैं, उन वो सब एक्सपीरियंस से, वो सब एडवाइस से वो लेकर कितना अच्छा से जी सकते हैं। तो ये जवान लोग सोचते नहीं हैं कि वो लोग सोचते हैं कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है बुजुर्गों का, कब आएगा वो? जब उनके साथ रहेंगे, जब उनके साथ रहेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ निकलेंगे, उनके साथ वो पोताब रख कर एगो कुएं में बातचीत करेंगे, तब पता चलेगा कि ये उनका क्या वैल्यू है, असली वैल्यू क्या है। क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ गेन ओनली थ्रू एक्शंस एंड टाइम। ये मगाज़ा में नहीं मिलता है ये एक्सपीरियंस। और ये जो वैल्यू सिस्टम है, और मुझे ऐसा मेरा अनुभव है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जब छोटा रहते हैं दादा दादी से बहुत जल्दी कुछ सीखते हैं, उनको बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको सब कुछ याद आता है, दादे कैसे थे दादी कैसे थे, सब कुछ याद होता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कनेक्शन, ये जो एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस। लेकिन जब जैसे मैं कह रहा हूँ, द फ्यूचर लाइज इन एक्सटेंडेड फैमिली, हम वापस वो जाएंगे, उसमें साथ में रहेंगे, ये दैट इज़ अ फ्यूचर। क्योंकि अपना इकोनॉमी बदल जाएगा, वो टेक्नोलॉजी भी बदल जाएगा, वो पूरा दुनिया का वो वातावरण भी बदल रहा है।
1: इस तरह की तस्वीर जो आप बोल रही हैं, अगर सचमुच हमारे सामने आ जाए, ये जो
0: पहले की तरह, और एक बात है बहन जी, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी यूरोप में लगभग 80 तक जी रहे हैं वो लोग, शायद 90 तक चला जाएगा। और 2080 तक ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग ज़्यादा होंगे बच्चे से। तो एकदम कितना होम्स
1: ये हाँ।
0: और एक इच्छा क्या होता है एक बुजुर्ग का बुढ़ापा समय में, होम में जाने का नहीं, घर में रहने का, अपने घर में वो मरने का।
1: ये तो सच बात है। हम लोग जाने लगा कि बुजुर्ग के जो संख्या दिन ब दिन
0: बढ़
1: लोग की सुविधा खातिर कैसे वो लोग के मतलब कायम रखेगी, यही सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमारे बच्चे भी ज़्यादा मतलब जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन उन लोगों का साथ भी होना चाहिए,
2: बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक किसी ने कहा है, बहुत सुंदर बात है, कहते हैं बुढ़ापा जो है थमने का नाम नहीं है, बुढ़ापा जो है थमने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का एक नया और सम्मानजनक अध्याय है। है ना, क्योंकि ये सम्मान की जो बात है, अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक न एक दिन तो हमें ये बात समझनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमारे जवानों पर या हमारे, देखिए क्या होता है कि आजकल हम कहते हैं सिर्फ हम ही मोबाइल चला, मैं नहीं, जो जवान होते हैं वो कहते हैं सिर्फ वही मोबाइल चला सकते हैं वही, मगर हमें जहाँ तक हो सके अपने बड़े बुज़ुर्गों को सिखाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। क्योंकि आप ये जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या पता नहीं कितने करने से फ़ोन है, कम से कम उन लोगों को सिखा दीजिए, ताकि उनको लोगों को महसूस ना हो कि मैं तो बेकार आदमी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, है ना, क्योंकि ये तो आधुनिक चीज़ें,
1: आधुनिक युग में हम जी रहे हैं।
2: तो कम से कम हमारे बच्चों को कम से कम समय दे। आप कभी ऐसा होता है आपके आपके आपके जन्मदिन पर मैं आपको एक मोबाइल दूंगा, ठीक है, मोबाइल तो मिल गया, अगर मोबाइल
1: सिखाना चाहिए, कैसे
2: क्योंकि हमारा कर्तव्य बन जाता है। ये सिर्फ नहीं, कितने ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे आपने भाई जी बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमारा जो अनुभव है, बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, वो इतने अनुभवी होते हैं कि अपने बच्चों को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया बचपन में, बुढ़ापे में अभी सिखा रहे। तो ये जो कम से कम बच्चों को भी अपने बुजुर्गों को भी सिखाना चाहिए, ये तो ना एक दोनों तरफ का, ये जो देना है आप भी दो वे भी दे, तो जीवन तो बहुत ही सुंदर बन जाएगा।
1: क्योंकि उन लोगों को भी सिखाना चाहिए कि मोबाइल हम लोग
2: जी, आज के युग में जीवन में ये तो कंपल्सरी बन गया है जैसे।
0: हाँ, और सिर्फ मोबाइल नहीं, कैसे यूट्यूब पर जाना
1: तो चलिए अपनी इस चर्चा को हम जारी रखते हैं।
0: मैं क्या कह रहा था, कैसे बोलते हैं वो एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, कैसे बोलते हैं इसको, जेरियाट्री, जेरियाट्रिस्ट कहते हैं कि

0: एक सीक्रेट, मतलब बुढ़ापा में जीने का एक सीक्रेट है, कुछ नया सीखो, संगीत सीखो, एक नया भाषा सीखो, एक नया एक्सरसाइज सीखो, कोई गाना सीखो, ओके, कुछ बजाना सीखो, कुछ नया साइंस पढ़ना सीखो, जो कि आपने जवानी में खरीद
1: थे
0: कर पुस्तक रखा है
1: हाँ
0: उसको
1: उसको
0: जाकर
1: पढ़ो
0: खोलो, पढ़ो उसको, है तो
1: व्यस्त रहो
0: हाँ,
1: काफी व्यस्त
0: देन
1: रहो
0: यू विल
1: यार।
0: फील यंग। एक दो चीज़ है, एक मतलब क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनिकल एज, जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कितना एज है आपका, 60 या 55 या 65, और मेंटल एज, दिमाग का
1: ना
0: जो जो तो वो कितना है, दिमाग में आपका कैसे है,
1: स्टिल
0: 20 है,
1: ट्वेंटी
0: 25
1: यंग
0: है,
1: है स्टिल
0: 17 है, हाँ
1: ट्वेंटी
0: स्टिल 20, तो वो उस पर आपका जीवन बहुत निर्भर होगा। आप सोचें कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे पास जॉब
1: नहीं, ये
0: नहीं है,
1: बिल्कुल धारणा, ये
0: क्या,
1: धारणा उसको निकालना चाहिए
0: तो
1: दिमाग में।
0: मेंटल एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जेरियाट्रिस, वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं, एज इज़ जस्ट ए नंबर, है वो देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू
1: नहीं,
0: कैन
1: इट्स
0: डू।
1: वेरी ट्रू, बहुत सच बात है।
0: मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत सभी लोग जाते हैं काएफ से, मैं उसका पब्लिसिटी तो नहीं कर रहा हूँ, वो जो बिजनेसमैन, वो जो उन्होंने वो कंपनी खोला 67 ईयर्स एज
1: हाँ
0: में,
1: या वो तो है।
0: एट द एज ऑफ 67, अभी,
1: एक श्रोता को
0: हाँ जी
1: जरा सुन
0: हाँ जी,
1: लेते हैं। हेलो
2: हेलो,
1: हेलो,
2: आपको शुभ नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: देखिए, आप लोग बुढ़ापा पर बात कर रही हैं ना, तो मैं एक आयाम पे बात करूं।
1: बताइए। और वैसे बहुत वक्त नहीं है नवीन जी, आप
2: जी हाँ,
1: जल्दी।
2: देखिए, ये बुढ़ापे को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हम उन बिंदुओं पर विचार करें जिनसे हमारा बुढ़ापा भारी न हो। हमें सदैव यही सोचना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा कैसे आनंद, स्वस्थ और शांति से ओतप्रोत हो। जिस प्रकार मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार बुढ़ापा भी एक सत्य है। अर्थात बुढ़ापा या वृद्धावस्था ऐसी ऐसी अवस्था है जिसे हर व्यक्ति को एक दिन गुजरना ही पड़ता है।
1: जरूर
2: बुढ़ापे में हमारा मन, इंद्रिय और बुद्धि, ये सब बाधा रहित बनी रहती है। हमारे विचार सत्कर्म की ओर चले तो हमारा बुढ़ापा सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद
1: धन्यवाद आपको इस
2: अनुराधा जी, और मेहमानों को भी धन्यवाद। शुभ
0: धन्यवाद,
2: दिवस, नमस्कार।
1: शुभ दिवस आपको भी, और आपके जो विचार एकदम ही सराहनीय है। और हमारे समय तो बहुत जल्दी ही जा रही है। एक और श्रोता है, तो चलिए आप अंत में हमें बताएं दो शब्द, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आपका क्या कहना है?
3: मैं तो यही संदेश के रूप में देना चाहूँगी कि दोनों तरफों पर ये बात है, लागू है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो है, उन लोगों को और समझदार बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा शुरू में, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जो कुछ आपका कर्तव्य था, आपको ये सोचना है कल क्या हुआ था, आप इसके बारे में मत सोचिए। कल क्या होने
1: होने
3: वाला
1: वाला
3: है
1: है ये
3: इसके
1: भी।
3: बारे में मत सोचिए। आज जो है सबसे सार्थक बात है, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, आज जो अभी आप जी रहे हैं। तो
1: प्रेजेंट।
3: अगर इस बात को आप सोचकर आगे बढ़ेंगे, तभी आप बहुत ही सुकून से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और ये है, अगर आप प्यार चाहते हैं तो आप प्यार बांटिए। जो कुछ हम चाहते हैं, अगर उसको हम ना बांटें, अब आप अपने कोने में बैठे रहेंगे, किसी से बात ना करेंगे, किसी बात, ये हंसी मजाक करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ये आपके लिए, आप अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए, ठीक रखने के लिए आप ये सब करेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि देखिए, जहाँ तक मेरे जो बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, हम आप लोगों से बहुत ही प्यार करते हैं, और हमारे जो जवान हमें सुन रहे हैं, हम आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि आपने आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ठीक तरह से जिए, और जितनी प्रगति आपके बड़े बुजुर्गों ने किया, उतनी प्रगति आप लोग भी करें।
0: हाँ जी, मुझे चार बात करना है,
1: जल्दी
0: जल्दी जल्दी। कैसी, अभी बच्चे के बारे में हम बात किए, मैं

0: कहूँगा, बट ये बुजुर्ग लोगों को भी बच्चों की बात कभी कभी सुनना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: साथ में रहने के लिए एक। दूसरी बात ये, अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाई लेना चाहिए रेगुलरली। तीसरी बात, अभी मोबाइल फ़ोन का समय है, ये लिपोक है, तो कोई फ़ोन करेंगे पूछेंगे तुम्हारा नंबर क्या है, अकाउंट नंबर
1: मत देना,
0: अकाउंट नंबर तुम्हारा पासकोड
1: से देगा। सब अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने बुजुर्ग के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, यही बात हम कहेंगे। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को विराम देंगे। श्रीमती अनीता गोविंद जी और श्री हेमंत राम गोविंद जी, आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, इतने अच्छा से आपने इतना बड़ा बड़ा विचार दिया।
2: आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको अनुराधा जी, आपने हमें मौका दिया, धन्यवाद।
1: फैजन उरूसा और रजनीश के सहयोग से और साथ में धर्म जी ने भी हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इस समय विवादों के केंद्र में है। इसके निदेशक मंडल को कल बर्खास्त कर दिया गया। खराब प्रबंधन से नाराज मंत्री माइकल सिक्वेया ने बोर्ड के सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने की सूचना दी है। नए बोर्ड की संरचना को कल शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। मॉरिशस की आबादी उम्रदराज हो रही है, लेकिन क्या मॉरिशस वासी बेहतर जीवन जी रहे हैं और क्या उनके पास इस वास्तविकता का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन है? बजट 2026-2027 पर केंद्रित एक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कई आपस में जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। जनसंख्या का वृद्ध होना, पुरानी बीमारियों में वृद्धि और सम्मानजनक जीवन जीने की बढ़ती लागत, इन सभी चुनौतियों से एक ही सवाल उठता है, आने वाले वर्षों में मॉरिशस अपने सामाजिक कल्याण मॉडल को कैसे बनाए रख पाएगा? रितेश गरोबी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का प्रारंभिक आरोप कल रिवियाजोंपा जिला अदालत में खारिज कर दिया गया। मामला मुख्य रूप से आइलैंडर नाम की एक मनोरंजन नौका से जुड़ा था, जिसकी कीमत 6 लाख मॉरिशस रुपए आंकी गई थी। पुलिस को संदेह था कि ये नौका अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। और उधर गांवे में रहने वाली इस मछली पकड़ने वाली कंपनी के निदेशक पर अभी भी उनके भाई नीतिराज, जो एक स्कीपर है, के साथ ड्रग्स तस्करी के मामले में असाइजेस अदालत में मुकदमा चल रहा है। विदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुबई से तेल अवीव जा रही एक उड़ान के दौरान दूसरे पायलट पर चाकू से हमला करने और कथित तौर पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश में एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 35 बी मिडल रोड बेलीतवाल में 74 साल के 74 years old श्री हेमलाल वगिनलाल मोदी, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे,

मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 35B मिडल रोड बेलेटवाल से उठाकर शेबल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। लोलजी लेन मौताबा में 68 साल के 68 years old श्री प्रीतम लाल जिलाल, जिन्हें लोग हाविन जून नाम से जानते

इनके अर्थे आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी नंदा लाल जिलाल के मकान लोलजी लेन मोताबा से उठाकर माघी रानी रोजबेल कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2:30 PM। और नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड 4 पोर्ट लुइस में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड बीबी साफिया रामजोन पैदाशी नाम एदा ताली और जिन्हें लोग सिस्टर रामजोन नाम से जानते थे का इंतकाल हो गया है। वे पहले डॉक्टर जीटू अस्पताल में मैट्रोन थी। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड 4 पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी हमदर्दी है।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भक्ति धारा। तो चलिए, भक्ति की धारा बहने जा रही है रेडियो मॉरिशस पे। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। और भक्ति धारा कार्यक्रम इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपके सेवा में प्रसारित करने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करते हैं। और आपको पता है कि भगवान गणेश जो है विघ्नों को दूर करने वाले देवता है। प्रथम पूजनीय देवता को हमारा प्रणाम।

0: चलिए श्रोताओ, 10:19 हो चुके हैं। आइए, एक विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। और ये विशेष कार्यक्रम जो है हम आपके लाए हैं ब्राह्मण महासभा की तरफ से, पितृपक्ष के शुभ अवसर पर।
1: हरि ओम।

Videhi Sangha Pradakramopanishadir Gayantiyam Samagaha Dhyanavasthidadatgatena Manasa Pasyantiyam Yogino Yasyantam Naviduhu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Arihi Oma Brahma Jagnanam Pradamam Purastadvi Simataha Surucho Vena Avaha Sabhunya Upama Asya Vishthaha Satasya Joni Masasya Vivaha. Sri Satya Sanatan Dharma Satchidanand Dhan Swarupa Jagannyanta Jagadanath Karunanath Purna Brahma Anant Koti Brahmana Nayak Jagat Jagadishwar Parat Parabrahma Satya Samaj Anyamanubhav Devya Sajino. Aaj Pitripaksh ke is Atyanta Pavam Evam Bhav Purna Avsar Par Aap Sabhi Ka MBC Radio Mauritius ke is Prasaran ke Majham se Hriday se Abhinandan Evam Mangalmay शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर श्री सनातन धर्मीय ब्राह्मण महासभा की ओर से हम एमबीसी रेडियो मॉरिशस का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु सादर आमंत्रित किया। यह हमारे लिए परम सौभाग्य एवं गौरव का विषय है। अब हम उसी पुण्य प्रवाह को आगे बढ़ते हुए आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ विचार करेंगे। पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है और हमारे जीवन में पितृकर्म का क्या महत्व है। आइए एकाग्रचित होकर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हो। ओम पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष और श्राद्ध। प्रिय श्रोतागण, पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन धार्मिक परंपरा है। लेकिन पितृपक्ष को समझाने से पहले हमें समझाना होगा कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है। श्राद्ध केवल पिंड रखने का नाम नहीं है। श्राद्ध केवल दिवंगत परिजनों को स्मरण करने का नाम भी नहीं है। श्राद्ध का मूल शब्द है श्रद्धा, अर्थात श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त किया गया धार्मिक कर्म। हमारे शास्त्रों में पित्त कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, देव पित्त कार्याभ्याम न

प्रमदितव्यम अर्थात देव कार्य और पित्य कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और उसी उपदेश में कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अर्थात माता पिता आचार्य और अतिथि को देव तुल्य मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। इससे हमें यह समझाना चाहिए कि पितरों के प्रति श्रद्धा सनातन धर्म की मूल जीवन दृष्टि का अंग है। पितृयज्ञ का शास्त्रीय प्रमाण। अब हम मनुस्मृति की ओर आते हैं। तृतीय अध्याय श्लोक 70 में पंच महायज्ञ का वर्णन करते हुए कहा गया है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तुत्यर्पणम होमो देवो बलिर भौतो नियज्ञो तिथि पूजनम अर्थात अध्यापन ब्रह्म यज्ञ है, पितरों के लिए तर्पण पितृयज्ञ है, होम देव यज्ञ है, भूतों के लिए बलि भूत यज्ञ है और अतिथि सत्कार नि यज्ञ है। इसलिए पितृपक्ष में किया जाने वाला तर्पण केवल पारिवारिक परंपरा नहीं है, यह पितृयज्ञ की सनातन परंपरा का अंग है। श्राद्ध का समय, अब प्रश्न उठा है श्राद्ध कब किया जाए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय श्लोक 217 और 218 में श्राद्ध के अनेक काल बताए हैं। अमावस्यास्तका वृद्धि कृष्ण पक्षो यनद्वयम् दव्यम ब्राह्म संपत्तिर् विषुवत सूर्य संक्रमः व्यतिपातु गच्छाया गृहानं चंद सूर्ययोः श्राद्धं प्रति रुचिश्चैव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः। इसमें अमावस्या अष्टका कृष्ण पक्ष अयन संक्रांति आदि अनेक अवसरों का उल्लेख मिलता है। अतः पितृपक्ष कोई आधुनिक या मनमानी परंपरा नहीं है, यह व्यापक शास्त्रीय पितृकर्म परंपरा का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। मार्कंडेय पुराण के 31वें अध्याय में पार्वण श्राद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अध्याय में श्राद्ध के समय विधि पिंड और पित्त संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है। वह पिता पितामह और प्रपितामह को पिंड संबंधी तीन प्रमुख पितरों के रूप में बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध केवल किसी एक दिवंगत व्यक्ति का स्मरण नहीं है, यह हमारी पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता और उत्तरदायित्व अभिव्यक्ति है। श्राद्ध में श्रद्धा का महत्व। प्रिय श्रोतागण, श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण शब्द ही है श्रद्धा। धर्म में साधन की उपेक्षा भावना का महत्व अत्यंत बड़ा है। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य अधिक हो सकती है और किसी का कम। किसी के पास विस्तृत विधि से श्राद्ध करने की सुविधा हो सकती है और किसी के पास सीमित साधन। ऐसी स्थिति में हमें निराश होने का आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य कुलाचार और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार

श्रद्धापूर्वक पितृकर्म करना चाहिए। स्वाद में दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। अहंकार नहीं, कृतज्ञता चाहिए। भय नहीं, धर्म बुद्धि चाहिए। स्वाद पद्धति और आचार्य की आवश्यकता। हमारे विभिन्न धर्मशास्त्र, गृह सूत्र और स्वाद पद्धति ग्रंथों में संकल्प, आचमन, पवित्रकरण, देव पूजन, पित्त आवाहनम, अर्घ्य, तर्पण, पिंडदानम, ब्राह्मण सत्कार, दक्षिणा और विसर्जन आदि की विधियों परंपरा से अनुसार बताई गई है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपनी कुल परंपरा, गृह सूत्र और आचार्य परंपरा के अनुसार विधि का पालन करना उचित है। हर परिवार की विधि बिल्कुल एक जैसी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मूल भावना एक ही है, श्रद्धया पित्तकार्यम करणीयम। तिल और जड़ का भी पित्तकर्म में विशेष महत्व है। तर्पण और तिलोदक जैसे विधियों अनेक श्राद्ध विधानों में वर्णित हैं। अतः जो व्यक्ति विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहता है, वह योग्य आचार्य से अपनी परंपरा के अनुसार विधि अवश्य समझे। अब इस विषय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष, हम पितरों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी सिखाते हैं, पितृदेवो भव, यदि हमारे माता पिता आज हमारे साथ हैं तो उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। उनके साथ प्रेम से बात करें, उनके लिए समय निकालें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लें। केवल दिवंगत माता पिता के लिए श्राद्ध करना और जीवित माता पिता की उपेक्षा करना पितृ सम्मान की पूर्ण भावना नहीं हो सकती। आज मॉरिशस सहित पूरे विश्व में परिवारों का स्वरूप बदल रहा है। हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई परिवार अलग अलग देशों में रहते हैं। कभी कभी हमारे अगली पीढ़ी को अपने दादा दादी और परदादा परदादी के नाम तक ज्ञात नहीं होते। इस पितृपक्ष में एक छोटा सा कार्य अवश्य करें, अपने बच्चों को अपने पितरों के नाम बताइए, उन्हें अपने परिवार की कथा सुनाइए, बताइए कि हमारे पूर्वजों परिवार और समाज के लिए क्या त्याग किया, किन कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया और कौन से अच्छे संस्कार हमें देकर गए। इस प्रकार पितृस्मरण केवल एक दिन का कर्म नहीं रहेगा, बल्कि संस्कारों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली परंपरा बनेगा। जिनकी तिथि ज्ञात नहीं, यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात है तो अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, और जिन पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है उनके लिए परंपरा में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ देश काल तिथि और कुलाचार का विचार आवश्यक है, इसलिए स्थानीय पंचांग और योग आचार्य के मार्गदर्शन से तिथि निश्चित करना उचित है।

श्रोतागण, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, पितृपक्ष भय का विषय नहीं है। पितृपक्ष हमें 5 बातें सिखाता है, श्रद्धा, स्मरण, कृतज्ञता, सेवा, संस्कार। हम अपने पितरों को इसलिए स्मरण करते हैं क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। इसीलिए पितृपक्ष को भय और अंधविश्वास से नहीं बल्कि शास्त्र, श्रद्धा और विवेक से समझाना चाहिए। हम अक्सर पूछते हैं, पितृऋण कैसे चुकाएं? इसका उत्तर केवल पिंडदान तक सीमित नहीं है। यदि हमारे पितरों ने हमें सत्य सिखाया, हम सत्य बोले। यदि उन्होंने धर्म सिखाया, हम धर्म का पालन करें। यदि उन्होंने परिवार को जोड़ा, हम परिवार में प्रेम बनाए रखें। यदि उन्होंने सेवा और दान किया, हम भी सेवा करें। यदि उन्होंने सनातन संस्कारों की रक्षा की, हम भी उन संस्कारों को अपनी संतानों तक पहुँचाए। यही पितृऋण के प्रति जीवित कृतज्ञता है। आज इस पावन पितृपक्ष में हम सब एक संकल्प लें। हम हमें पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रोक्त पितृकर्म करेंगे, अपने माता पिता और पितृ का सम्मान यानी कि पूर्वजों का सम्मान करेंगे, अपनी संतानों को अपने पूर्वजों और सनातन संस्कारों से परिचित कराएंगे और अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारे बाद आने वाले पीढ़ियों भी हमें श्रद्धा से स्मरण करें, क्योंकि हमारी जड़ी हमारी पितरों में है, हमारा वर्तमान हमारे कर्मों में है और हमारा भविष्य हमारी संतानों के संस्कारों में है। आए अब कुछ क्षण अपने हृदय में श्रद्धा धारण करके अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करें। ओम अनादिनिधनुदेव शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितामहेभ्यो नमः। ओम प्रपितामहेभ्यो नमः। सर्वेभ्यः पितृभ्यः च नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस पे। बहुत ही प्यारा सा भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, बुद्धि और कर्म का सुंदर संदेश देता है। उनकी बांसुरी की मधुर धुन हो या गीता का ज्ञान, हर रूप में कृष्ण जीवन को एक नई दिशा जो है देते हैं। तो चलिए श्रोताओ, 10:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और आपके लिए चंद भक्ति गान दिन के 11 बजे तक।

चलिए श्रोताओं, आपके लिए चंद भक्ति गान इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और गुरुवार का दिन, जैसे आपको पता है कि हम भगवान हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी पूजते हैं, तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा जो है भक्ति गीत जो है आपकी सेवा में प्रसारित करने जा रही है।

श्रोताओं, श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण जीवन में धर्म, संरक्षण, समृद्धि और संतुलन की भावना जगाता है। विष्णु जी को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में और माँ लक्ष्मी को समृद्धि एवं सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान साईं बाबा को भी, और साईं बाबा का संदेश है श्रद्धा और सबूरी का, और यही सीख जो है हमें अपने जीवन में

तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और सुबह सवेरे 6 बजे से आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। तो चलिए श्रोताओं, एक और मुलाकात तक। वैसे हम मिल रहे हैं कल इसी चैनल पे सुबह के 10 बजे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

चलिए श्रोताओं, सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वालोंचिना और पिचिकॉन फिनिक्स के रहने वाले निवासों को, जिनमें से डुबले या पिचिकॉन पिचिकॉन विलाज के कुछ भागों के रहने वाले निवासों को फिनिक्स बेवरेज ग्लास गैलरी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को सपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। यह रेडियो मॉरिशस है।

0: मिलते पूजा से जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार पूजा।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। कल पुलिस और प्रवीण जगनाथ के बीच जारी किए गए बयानों के माध्यम से एक वास्तविक टकराव देखने को मिला है। लाइन बराक्स ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री के रुख का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सीसीआईडी में अपनी पूछताछ के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि स्थिति इसके विपरीत है। मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और सबूत प्रवीण जगनाथ को उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस ने बहस को स्पष्ट करते हुए ये भी कहा कि किसी संदिग्ध से पूछताछ करने से पहले उनके खिलाफ उचित संदेह जुटाना जरूरी है, लेकिन पुलिस पर ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो पहले से ही संदिग्ध को उन संदेहों के सही होने के बारे में आश्वस्त करे। लेकिन एमएसएम के नेता की प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। देर शाम जारी एक बयान में प्रवीण जगनाथ ने सीधे तौर पर अधिकारियों के रुख का विरोध किया। वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान सरकार की आय और खर्च का क्या हाल रहा है? स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के किया हालिया आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये लगभग 170 बिलियन रुपए से बढ़कर 197 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। मॉरिशस की एकेडमिक और सांस्कृतिक दुनिया ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित महानुभावों में से एक को खो दिया है। विनेश हुकुम सिंह मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर थे और सबसे बढ़कर वे मॉरिशस क्रियोल भाषा को मान्यता दिलाने और उसके महत्व को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों के अग्रदूत के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। 1970 के दशक से ही ऐसे समय में जब मातृभाषा को दूसरे दर्जे पर रखा जाता था और इसके प्रति कई पूर्वाग्रह मौजूद थे, विनेश हुकुम सिंह ने अपने जीवन को मॉरिशस की भाषाई विरासत की वैज्ञानिक नींव तैयार करने के लिए समर्पित कर दिया। और विदेश की खबरों

में नेपाल में भूस्खलन और भारी बारिश की एक और लहर के कारण लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। वहां अभी अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ से उबर भी नहीं पाया है, जिसमें 1400 लोगों की जाने गई थी और हजारों अन्य लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले सप्ताह के अंत से अब तक 1900 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि 240 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़कें, इमारतें और पुल बह गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए।

0: नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड चार पोटली समय 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड बीबी साफिया रामजोन पैदाशी नाम एदाह ताली और जिन्हें लोग सिस्टर रामजोन नाम से ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है। वे डॉक्टर जीटू अस्पताल में मैट्रोन थी। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 24 सेंट जेम्स स्ट्रीट वार्ड चार पोटलिस से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 35 बी मीडर रोड बैलीतवाल में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री हेमलाल वांगिंगलाल मोदी, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे, की मृत्यु होगी। हैंकर थे आज दिन के 2 बजे इनके मकान नंबर 35 बी मिडल रोड बेल इतवाल से उठाकर शिबैर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और लोलजी लेन मताबा मेयर 60 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री प्रीतम लाल जिलाल, जिन्हें लोग राविन जोन नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी नंदा लाल जिलाल के मकान लोलजी लेन मौताबा से उठाकर मागी रानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: शम्मे फरोजा

और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा।

अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रस्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रस्ते पर चलाता है।

जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्न मरियम है, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्न मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है।

और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे, और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है।

अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनकते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।

और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ऐ भाइयों तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है दाखिल हो चलो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना वरना नुकसान में पड़ जाओगे।

वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो सरजमीन से निकल ना जाएं, हम वहां जा नहीं सकते। हां, अगर वो वहां से निकल जाएं, तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो।

0: वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जाने के। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो।
1: वत

और ऐ नबी, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक न्याज पेश की तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोजख में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पेशेमान हो गया।

मौज़ सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है, अक्टूबर की पहली तारीख है और माह रबीउस्सानी रबीउल आखिर की आज 19 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251700055। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। आज जुमेरात बाद नमाज इशा दारुल उलूम फ्लाक में मौलाना मोहम्मद शमीम अशरफ अजहरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाएगा। ख़वातीन के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जी हाँ, सनीचर 3 अक्टूबर दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर ICC में मोहतरमा आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में ख़वातीन और बच्चों के लिए एक रूहानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

की अता करदा अनमोल नेमत है। ये घर की रौनक वालदैन की आंखों की ठंडक और मुस्तकबिल की उम्मीद होती है, मगर इस नेमत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी वाबस्ता है कि हम अपनी औलाद की सिर्फ दुनियावी कामयाबी की फ़िक्र ना करें, बल्कि उनकी दीनी, इखलाकी और रूहानी तरबियत का भी एहतमाम करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान वफात पा जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला अब मुंतखा हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के सदक़े जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ।

औलाद है तो घर में बहारों का समा है, औलाद की मुस्कान में एक लुत्फ़े जहाँ है, दौलत से कहीं बढ़कर है औलाद की नेमत, नेकी पे चले तो यही माँ बाप की इज्जत, ऐ रब हमारी नस्ल को ईमान अता कर, इखलाक की खुशबू से ये गुलजार सजा दे, उनके दिलों में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन रहे, कुरान की तालीम से हर दिल मुनव्वर रहे। ऐ पाक परवरदिगार हमारी औलाद को नेक साले बाद अब

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। वालदा शबनीस ने अपनी बेटी कनीज सकीना अम्बिदेसी के लिए और रिमशा सिद्रा के लिए और इजहान बिदेसी के लिए बहुत सारी दुआएं और प्यार भेजा है। जी हाँ, दुआए शिफा की गुजारिश की गई है तमाम मरीज़ों के लिए, और दुआ की गई है कि जितने भी लोग इस वक्त जो भी किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को हल फरमाए, तमाम बच्चों को नेक राह पर चलाए, और तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफरत की गुजारिश की गई है। और ये गुजारिश की थी करीमुल्ला फैमिली ने बोलो से। इसके अलावा फिनाज सोमाली दागुचिया से अपने शौहर असलम सोमाली और अपने बेटे इकरान, फरहान और इस्माइल, ईसा और इब्राहिम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खैर आफियत से रखे और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये थे चंद पैगामात।

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग।
3: संगीत प्रेमी श्रोतियानो नमस्कार, सुस्वागतम। मैं आशा करते कि आप ठीक हाथ में से तहत एंड चुनी करे तहत ऑन MBC रेडियो के क्षण अर्ध्यता साचा कार्यक्रम शुरू होना रहे तुम्हारा सगलांच्या मनोरंजना साथी रसिको ने हम इस प्रमाणे आम ची साथ आप नक्कीच या कार्यक्रमाचा शेवट पर्यंत म्हणजे 2 पर्यंत रसिको सुरुवात करूया। आजचा आपला स्वरतरंग कार्यक्रम नेहमीच प्रमाणे बाप्पाचा जय जयकार करून

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 1 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए 2:45। रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। कैसे हैं आप सभी? और चलिए देखते ही देखते अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई और सितंबर महीना ख़त्म हो गया और बस मानो और कुछ महीने और ये साल भी पलक झपकते ही समाप्त। और अभी तो जैसे जैसे हम साल के अंत तक बढ़ते जाते हैं ना, ऐसा होता है कि टाइम इतने जल्दी बीतता है कि क्या कहें। तो चलिए, यहाँ पर बड़े ही प्यार से हमें पता है कि आज भी आपका साथ हमें मिलने वाला है आपकी पसंद इस

प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं और जहां कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फरमाइशी गीतों का ये जो सिलसिला है इसे हम शुरू करते हैं। और भूलिएगा नहीं 4028085 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, और साथ ही आपके मैसेजेस जो है आपके मैसेजेस 5251700005 पर। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी अपनी फरमाइशें अपनी डेडिकेशंस हम तक पहुंचाइए।

0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ए बादशाह, बादशाह, बादशाह, मेरे चंद आदमियों को मारकर समझता है कि जीत गया तू? मैं आऊंगा, फिर आऊंगा।
2: एक बाप से टकराने की बेवकूफी मत करना। तूने मेरे बच्चे के साए को छूने की कोशिश भी की तो वो हाल करूंगा तेरा कि ना जलाने के लिए शरीर बचेगा ना बहाने के लिए अस्थियां।
3: हर तरफ तू ही दिखे।
0: गुरुवार 1 अक्टूबर को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे स्पेशल वर्ल्ड एल्डर डे पर आधारित फिल्म रिश्ते 2002 की ये मूवी अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माई गई रिश्ते।
3: चाहता हूँ इतना तुझे।
0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: बिल्डिंग अच्छी लग रही है, फ्लैट है उसमें?
5: एक फ्लैट है उसमें। वो क्या है साहब, यहाँ रहने वाली एक औरत बालकनी से गिर के मर गई थी।
6: मंजीत का भूत, मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ।
7: मौत हमें उस विशाल अंधेरे में ले जाती है जो हमारे चारों तरफ छाया हुआ है और हम अपनी जिंदगी की छोटी सी रोशनी में रहकर उसकी हकीकत को भूल जाते हैं।
3: हजारों नरकों में।
0: शनिवार 3 अक्टूबर को MBC 3 पर 9:00 बजे हिंदी फीचर फिल्म भूत 2003 की मूवी उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन पर फिल्माई गई भूत।
8: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
9: आपकी पसंद।
10: चलिए, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद शुरू हो चुका है रेडियो मॉरिशस पर और साथ ही यहाँ पर आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस भी मिलना हमें शुरू हो गए हैं। 4028085 साथ ही 5251700 पर। चलिए, दिन भर की थकावट को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश हमारी इन सभी प्रोग्रामों के ज़रिए। ऐसे आधा दिन तो निकल चुका है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में जो है 3 बज जाएंगे यहाँ पर। और अभी के लिए मिली फिल्म का ये जो तराना है, मिली फिल्म का ये जो तराना है, इसके साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। मिली इस फिल्म की गाने की जो फरमाइश है वो आई है माधुरी जी की ओर से। माधुरी जी की ओर से गाना जाता है परी के नाम। बीना है, शोभा है, रेखा है, आपके सभी दोस्तों के लिए, आपके सभी परिवार के लिए, और बड़े ही प्यार से आज भी आप हमारा साथ दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

और चलिए इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समाचारों के उस पार आपके पसंदीदा प्रोग्राम जारी रहेगा। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मिलते हैं रजनी से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। मॉरिशस और राष्ट्र संघ विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग का जायजा ले रहे हैं। 2024-2028 सहयोग कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बालाक्लावा के मारिटाइम होटल में लगी। इसकी अध्यक्षता मंत्री रितेश डॉम्फर और लीजा सिंह ने की। दोनों पक्षों का मानना है कि नई चुनौतियों का सामना कर पाने के लिए हमारी साझेदारी बरकरार रखनी चाहिए।

0: कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति नहीं है। आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित JNJ सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया। मंत्री अशोक सुबह ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्याना वमागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध लोगों की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने के वास्ते सरकारी कटिबद्धता दोहराई। इसके मद्देनजर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार संबंधी कार्यों में प्रगति हो रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना और उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाने में सुविधा प्रदान करना। MBC न्यूज के रेडियो विभाग को दिए गए एक बयान में व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्योन ने STC की प्रशासनिक परिषद के रद्द किए जाने का इरादा व्यक्त किया। इसी शुक्रवार को मंत्रिमंडल के सामने इस पर चर्चा की जाएगी। मंत्री के अनुसार STC की जिम्मेदारी में कुछ पदार्थों के स्टॉक भंडारण से वे संतुष्ट नहीं। वाकुआ स्थित SMF जिमखाना आज सुबह एक कार्रवाई स्थल में तब्दील। जी हां, असल में वहां पर हस्तक्षेप करने वाले कुत्ते, राहत कार्रवाई और सशस्त्र गुटों को नाकाम करने की कार्रवाइयां चलाई गई। मॉरिशस एवं रेनियन टापू की ताकतों के बीच सहयोग के अंतर्गत एक सिमुलेशन कार्रवाई का आयोजन हुआ। मसलन एक इमारत के पास एक धमाका होना, छत से घायलों को बचाना और कुछ ही मिनटों में लोगों की जान बचाना। SMF और JPM की टीमों को इसी सिलसिले में हस्तक्षेप करना था। विदेशी समाचारों में भारत के रुख करते हैं। तमिलनाडु में 90 बांधों में पानी का भंडार उनकी कुल क्षमता से लगभग 34% तक गिर गया। लगातार गर्मी के कारण 63 जलाशयों में पानी उनकी क्षमता के 1/4 से भी कम रह गया, जिससे कि सिंचाई में काफी दिक्कतें हो रही है। दिलेरी की कहानियां रोजाना की जिंदगी से निकल आती है। कल फ्लाई दुबई की फ्लाइट में हुए वाकये से कई हीरो सामने आए। खून से लथपथ फ्लाई दुबई के कॉकपिट के फ्लोर पर पड़े कैप्टन स्मिथ मचार ने बड़ी जद्दोजहद के बाद कॉकपिट को खोलने वाला बटन दबा दिया। उनके इस कदम ने वो काम किया जिससे लगभग 180 लोगों की जिंदगी बच गई। कॉकपिट का दरवाजा खुलते ही यात्री और क्रू सदस्य अंदर घुसे और हमलावर पायलट को काबू में किया तथा 1 मिनट में 16,000 फीट नीचे जा चुके प्लेन को काबू में किया। और इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर की तारीफ की। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार। News on MBC Play and MBC.MU.
1: 819 kilohertz. ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: आपकी पसंद.
3: चलिए, आपके पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। आज है 1 अक्टूबर और 3:05 यहाँ पर होने को है। और चलिए, यहाँ पर फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम है, इसे आगे ले जाते हैं। और यहाँ पर अगला जो गाना है, बहन रूमा आरती इंदिरा के नाम, भाई राकेश धीरज के नाम, बेटा है नुमलेश, बेटी है कीर्तिना, सभी सुनने वालों के नाम। और ये जो फरमाइश है बड़े ही प्यार से शिमला जी की ओर से आई है, जो बेलरोज से हमारा साथ दे रही है। शिमला जी ने वापस फिल्म के तराने की फरमाइश की है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में। एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। बिल्कुल, अपनों का साथ होता है तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटती है। और ऐसे में ज्योति जी यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कहती है कि अगला गाना हो जाए प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और अविष्टा के नाम।
4: एक

की पसंद। यकीनन आपका भी साथ हमें बहुत ही प्यारा है, इसलिए तो जब भी मौका मिलता है हम आ जाते हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए। और आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि आप लोगों के लिए भी हमारा ये जो साथ है कितने मायने रखता है। आपके प्यार भरे मैसेजेस यहाँ मिलते हैं, आपके फरमाइशें यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। आफिस जी लावेनिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है और आफिस जी कह रही है कि हो सके तो निकाह फिल्म का एक तराना हो जाए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इस गाने को वो मांग रही है अपने पति को याद करते हुए, अपने शौहर को याद करते हुए। तो चलिए ये गाना आपके लिए हम चलाएंगे आफिस जी। और यही गाना जाता है ज्योति जी, जो हमेशा शाटा बनारस से हमारा साथ देती हैं, और उनकी ओर से गाना जाएगा सुरेखा, रेखा, आशनी और सभी मधव परिवार के नाम।

0: की पसंद।
1: लेकिन मैन कभी कभार होता है ना कि हमारे जो एहसास है, हमारे जो जज्बात है, वो आंसू बनकर बह जाते हैं, क्योंकि चीज़ें जब अंदर दबी रहती है तो मानो दिल पर बोझ पड़ जाता है। तो रोना अपने आप में कमज़ोरी नहीं, अपने आप में एक ताकत होती है जहां पर हम अपने एहसासों को बयां कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए अगला गाना आप लोगों के लिए, हम यहाँ पर चोर मचाए शोर फिल्म का ये जो तराना है, दिलीप जी ने कोंगमा से इस गाने की फरमाइश की है लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। और एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, ये जो गाना है जाता है इनकी ओर से इनकी पत्नी संगीता के नाम, साथ में योगेश है, कविता है, किश्नवी है, दानन है, इंदिरा है, सभी बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं।

की पसंद। जी हाँ, यहाँ पर खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है जारी है, और यहाँ पर ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना 90s का एक तराना है। जी है, मोहरा फिल्म का ये जो गीत होगा, पंकज उदास साधना सरगम जी की आवाज़ों में। मोहरा ये फिल्म जो है 90s के सालों की पॉपुलर फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार इसमें नज़र आए थे, रवीना टंडन थी, और ऐसे में जो अगला गाना है इसकी फरमाइश राजन लक्ष्मण जी की ओर से आई है। लाफ्लोरा से हमेशा हमारा साथ देते हैं, इनकी ओर से गाना जाता है की पत्नी माला के लिए। साथ में बेटियां हैं प्रगति और प्रार्थना मानती है, इनकी नीस है उर्मिला तुलसी, और सभी लक्ष्मण परिवार के नाम जो लाफ्लोरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही गाना इनकी ओर से हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी।

और जिन्हें पंकज उदास और साधना संगम जी की आवाज़ों में ये था बड़ा ही खूबसूरत सा तराना जो अभी आप सुन रहे थे। और यहाँ पर अगला जो गाना है स्वस्ति जी आपके नाम हम करते हैं कटबोन।

आप साथ दे रही। आपने कहा कि जब से तुम्हें देखा इस फिल्म का गाना सुन ले सुन ले, लेकिन आपको बता दें कि जब से तुम्हें देखा इस फिल्म का एक ही गाना है हमारे पास, हम आपकी महफिल में रफ़ी साहब की आवाज़ में, तो इस गाने को हम आपके लिए चलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस समय विश्वानी जी, विश्वानी दुमन जी वाकवा से साथ दे रही है। गाना जाएगा आपकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता गजाधर जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यही गाना सभी दुमन परिवारों के नाम हम करते हैं। इस समय मौदाल ब्यास से अनिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना इनकी ओर से इनके सभी दोस्तों के नाम करुणा है, अमृता है, और आपके सभी दोस्तों के लिए जो हमेशा हमारे सभी प्रोग्रामों में साथ देते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, खूबसूरत गानों की महफिल तो यहाँ पर भी सजी हुई है और यहाँ पर ऐसे में अब बारी है इस अगले तराने की। तकदीर फिल्म का ये जो अगला गीत है, आकाश पे बैठा हुआ, लिखता है वो तकदीर, रफ़ी साहब की आवाज़ में, जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये गाना उनकी ओर से सभी सुनने वालों के लिए और रफ़ी साहब के सभी फ़ैन्स के लिए भी। और सुदेवी जी वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। गाना जाता है 3LA की इनकी दीदी लालिता के लिए। साथ में है सभी कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, देवीना, माला, बिंदु मालिंगा से है, कृषय, कृष्णी, प्रणीता, सभी रामरतन परिवार, सभी कुवारू परिवार, रघुबर परिवार, जलू परिवार, हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, कहा इन्होंने कि बस कोई भी गाना हमारे लिए चला दीजिए, तो चलिए तकदीर फिल्म का ये गाना आपके नाम करते हैं। और सुदेवी जी, खास कर ये गाना आपके लिए भी।

keep us in. यकीनन आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, और कभी कभार तकदीर में जो लिखा होता है उसी ज़िंदगी को हम जीते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह से मेहनत करते हैं, इस तरह से परिश्रम करते हैं कि अपनी तकदीर को बदलते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। चलिए अभी के लिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और जब जब फूल खिले फिल्म का ये जो अगला तराना है।

लता जी की आवाज़ में होगा। ये समा समा है, ये प्यार का गाना जाता है यहाँ पर सरिता जी की ओर से, उनके सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवार के लिए, गुडलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। परी जी का मैसेज आया है कि कह रही कि अभी तकदीर फिल्म के गाने की फरमाइश करने ही वाली थी, मैसेज टाइप ही कर रही थी कि गाना चल पड़ा। देखा आपकी दिल की बात हम कैसे जान लेते हैं। चलिए परी जी, ये गाना आपके नाम, इनफैक्ट ये जो अगला तराना है इसे आपके नाम करते हैं, आपकी फरमाइश करते तो गाना चल पड़ा, तो कोई बात नहीं, ये अगला तराना आपके नाम हम करते हैं, समय बहुत कम है। तो चलिए, यहाँ पर मानिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग इतनी बेसब्री से हमारे प्रोग्रामों का इंतज़ार करते हैं। और गाना चाहता है यहाँ पर प्यारी माँ सुमंती के नाम, सभी परिवार के नाम जो सेंट जूलिया विलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये तराना जो है आपके नाम मानिता जी, आपके पूरे परिवार के नाम और खासकर आपकी माँ के नाम हम करते हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए, खूबसूरत समा यहाँ पर बनता जा रहा है इन सभी गानों के जरिए। और आज जितने भी सुनने वाले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जिनका भी आज जन्मदिन है। ऑब्वियसली जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है, और यहाँ पर अपनों के साथ जब हम जन्मदिन को मनाते हैं तो जो है खुशियाँ और भी बढ़ जाती है ना। तो चलिए, यहाँ पर आपकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल हो रहे हैं, और इन खूबसूरत गानों के ज़रिए जो है आप लोगों का मनोरंजन तो हम कर ही रहे हैं, और आपका प्यार भरा

साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। आज प्यारे भाई संजय का जन्मदिन है, तो उनके लिए एक खूबसूरत सा गाना और साथ ही उनको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं हाइलैंड्स के सभी परिवार की ओर से। चलिए, आपने परिवार का तो नाम नहीं बताया, लेकिन संजय जी आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आपकी बहन चंदनी की ओर से और पूरे परिवार की ओर से। ढेर सारा प्यार आपके नाम, आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा सुखी रहे और जीवन में आपको सारी खुशियां मिले। और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से। और ये जन्मदिन का तराना आप सभी के लिए है।

ये आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। और अब बारी है इस अगले तराने की। अगला जो गाना है यहाँ पर बड़े ही प्यार से सुनीता जी आपके नाम हम करेंगे। ग्राउंड ग्रुप से हमारा साथ हमेशा आप देती हैं और यही गीत जाता है साधना जी रिवेदिक क्रियोल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कह रही कि बाबुल फिल्म का गाना हो जाए टाइटल ट्रैक, कहता है बाबुल। ये गाना आपकी ओर से आपकी बेटी और बेटों के नाम मंशा है जो दुबई में है और साथ में पापा देवानंद, मामा साधना की ओर से भाई नीतीश, कुशल करण की ओर से अनुषा है, भाभी है कवीना, संहिता जीजा जी है सतीश, सभी परिवार की ओर से जिया तेज, गौरव क्रियान है, रिवेदिक क्रियोल मदालबिया यूनियन पार्क लारोसा के सभी जीवन परिवारों के नाम ये तराना।

आपके नाम हम करते हैं, हमेशा हमारा साथ देती है, आज भी हमें सुन रही हैं। विद्या जी यूनियन पार्क से जुड़ी हुई है, अभी भी ढेर सारे फ़ोन कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं, अभी भी ढेर सारे मैसेजेस। तो जाते जाते ये गाना हमारे तमाम सुनने वालों के नाम, हमारे सभी श्रोताओं के नाम जो हमेशा प्यार से साथ देते हैं हमारे सभी कार्यक्रमों में। और इसी के साथ आपकी पसंद यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। 4 बजे से हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति सागर इस कार्यक्रम को, तो आप यूं ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गुरुवार 1 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, सपैर के चार बज चुके हैं यहाँ पर। और रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति सागर इस कार्यक्रम का आरंभ यहाँ से होता है, अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। आपको ये भी बताते कि श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी, डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। और ईश्वर तो जो है अपने भक्तों की सदा सुनते हैं, बस सच्चे हृदय से सच्ची प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचानी चाहिए। और ईश्वर जो है अपने भक्तों के मन की सच्चाई को देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो तो हम बदले में आपको ये चढ़ा देंगे, लेकिन ईश्वर जो है बस भक्ति उन्हें चाहिए, अपने भक्तों के हृदय से निकलने वाली सच्चाई उन्हें चाहिए होती है। तो चलिए इसी के साथ भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करते हैं।

श्रोताओ, भक्ति सागर इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं। भक्ति सागर ये जो कार्यक्रम है चलता है हर गुरुवार को 4 से 5 बजे के बीच रेडियो मॉरिशस पर, और इस कार्यक्रम में बड़े ही प्यार से आप हमारा साथ देते हैं और भक्ति गीतों को सुनते हैं। और कहीं ना कहीं भक्ति गीतों को सुनने से ऐसा होता है कि मन जो है सकारात्मक हो जाता है, हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और मन शुद्ध होने लगता है। और जब मन ही में अच्छे विचार आते हैं तो फिर बुरे कर्म कैसे हो भला, है ना। तो चलिए, जब भी अवसर हमें मिले, जिस तरह से हम कभी कभार कुछ गीत गुनगुना रहे होते हैं, कोई फिल्मी गाने गा रहे होते हैं, कभी समय मिले तो भक्ति गीतों को भी हमें सुनना चाहिए, हमें इन्हें गुनगुनाना चाहिए। बहुत से लोग घर का काम करते करते मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कोई भक्ति गीत गाते रहते हैं, तो कहीं कोई ईश्वर का नाम लेते रहता है। और हर एक व्यक्ति अपनी भक्ति को अपने अपने प्रकार से अपने ईश्वर के प्रति दर्शाता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और श्रोताओं, भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब समय हुआ है हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष तारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। तो आइए उनको सुनते हैं। तारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष तारा।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, विद्वान कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्रों और राजा जनक की पुत्रियों का विवाह धर्म विवाह था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कोटि का विवाह था। गुण, कर्म और स्वभाव में वर और वधु एक दूसरे के अनुकूल थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का वे सफलतापूर्वक नियमानुसार पालन कर चुके थे और विवाह करके वे गृहस्थाश्रम के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए तैयार थे। श्रोताओं, ऋषियों ने शास्त्रों में आश्रम पद्धति के महत्व को रेखांकित किया है। आज का संदेश आश्रम व्यवस्था के महत्व पर आधारित रहेगा, साथ साथ रामायण महाकाव्य की कथा को भी हम विस्तार देंगे। परंतु इससे पहले आइए हमें गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने चार आश्रमों की व्यवस्था की है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान और धर्म प्राण संस्कृति है। धर्म के आचार्यों ने समाज और राष्ट्र की श्रेष्ठ व्यवस्था और अनुशासन के लिए व्यक्ति के चरित्र और आचार को ऊंचा रखना आवश्यक माना है, क्योंकि व्यक्ति की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव होती है। और श्रोताओं, व्यक्ति की उन्नति आश्रम धर्म के भली भांति पालन पर ही निर्भर रहती है। शास्त्र कहता है, शतायुर्वै पुरुषः। हमारे ऋषि मुनियों का मानना है कि मनुष्य का जीवन कम से कम 100 वर्षों का होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जीवेम शरदः शतम्। इन 100 वर्षों को कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान में बांट दिया गया है। प्रारंभ के 50 वर्ष कर्म के अनुष्ठान के लिए और अंतिम भाग के 50 वर्षों को ज्ञान अनुष्ठान के लिए निर्धारित कर दिया गया है। परंतु भले ही पहले के 50 वर्ष कर्म अनुष्ठान के लिए निर्धारित हैं, फिर भी इन वर्षों में ज्ञान प्राप्त करने का भी तारतम्य बना रहता है। ऐसे ही अंतिम 50 वर्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए अवश्य रखे गए हैं, फिर भी कर्म संपादित करने का भी तारतम्य बना रहता है। कर्म और ज्ञान एक साथ ही चलते हैं। ज्ञान के बिना कर्म का और कर्म के बिना ज्ञान का कोई महत्व हो ही नहीं सकता है। श्रोताओ, मर्यादा और सदाचार के पालन के लिए व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 4 कालखंडों में बांट दिया गया है, और ये 4 भाग स्वाभाविक नियमों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। मनुष्य के भीतर जो स्वाभाविक शक्ति है, उम्र के अनुसार उसमें बदलाव और विकास होता है। उसी के अनुकूल मनुष्य के जीवन के 4 भाग हमारे ऋषि मुनियों ने बांट दिए हैं। पहला विभाग है

ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा भाग है संन्यास। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन के ऐसे दो आश्रम या भाग हैं जहां कर्म की महाशक्तियां कार्य करती हैं। इन दोनों आश्रमों का आधार कर्म है। ये आश्रम प्रवृत्ति परक हैं। इन आश्रमों में व्यक्ति के मन का झुकाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की ओर बना रहता है। परंतु जब वही व्यक्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में प्रवेश करता है, तब अपने आप वह इन विकारों से निवृत्त होने लगता है। उसके सारे लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। श्रोताओं, जीवन के पहले पड़ाव ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को क्या करना होता है, आइए देखते हैं। ब्रह्म का अर्थ है विद्या,

ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को क्या करना होता है, आइए देखते हैं। ब्रह्म का अर्थ है विद्या, उसी को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम में ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ में ज्ञान और शक्ति का संचय और विकास भी करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि प्रशांत आत्मा विगत भेर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चेतो युक्त आसीत मत्परः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति व्रती बनकर निडर होकर शांत अंतःकरण वाला बनकर सावधान होकर मन को वश में कर लेता है वही सच्चे अर्थ में प्रभु को पाता है। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह अपनी इंद्रियों को वश में करके विद्या का अभ्यास करे, इंद्रियों के साथ साथ मन को नियंत्रित करके संध्या वंदन में मन को लगाए। विद्या अध्ययन करने वाले को मनुजी महाराज आदेश देते हुए लिखते हैं कि नित्यम स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणम् देवता अभ्यर्चनम चैव समिदा धानमेव च। मनु महाराज ब्रह्मचारी को उसका कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वानों ऋषियों ज्ञान वयोवृद्धों को अच्छे कार्य करके संतुष्ट रखना चाहिए, स्नान करके शरीर को पवित्र करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। मनुजी महाराज कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जो भी हो ब्रह्मचारी को शास्त्रों का पठन पाठन, गायत्री जप, संध्या वंदन और अग्निहोत्र हर हाल में करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के नित्य कर्म हैं, विद्या अध्ययन करने वाले का कर्तव्य है। ब्रह्मचारी का यह भी कर्तव्य है कि वह सदा आलस्य और प्रमाद से दूर रहे। महान नीति शास्त्री चाणक्य जी महाराज विद्या अध्ययन करने वालों को सलाह देते हैं कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। यानी कि ब्रह्मचारी को विद्या प्राप्ति के समय सुख की आशा नहीं करनी चाहिए, कठोर तपस्या से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। और यदि विद्यार्थी विद्या में कुशल होना चाहता है तो उसे सुख का जीवन त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुख और आराम की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विद्या नहीं पा सकता है। अगर सुख चाहिए तो विद्या छोड़ देनी चाहिए, और अगर विद्या चाहिए तो सुख छोड़ देना चाहिए। श्रोताओं, रामायण महाकाव्य में श्री राम और लक्ष्मण को हमने कभी भी आलस्य प्रमाद करते नहीं देखा है। महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम की ओर जाते हुए भी वे संध्या वंदन, हवन, गायत्री जप, गुरु सेवा आदि करना कभी भी नहीं भूलते थे। आदि कवि वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि तस्यर्षे परमोदारम वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जपतुः परमं जपम्। वाल्मीकि मुनि श्रीराम और लक्ष्मण के श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होने का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि अयोध्या से जब दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम की ओर बढ़ते हैं तब सरयू नदी के किनारे वे एक रात बिताते हैं। सुबह वे ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं और तब गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार जब वे शिवाश्रम में
संध्या के समय पहुँचते हैं, तब भी वे पहले स्नान करते हैं।

आचमन करते हैं, जप और अग्निहोत्र करते हैं, फिर आश्रम में प्रवेश करके विश्राम करते हैं। बला और अति बला विद्याओं को ग्रहण करने के लिए वे 2 दिन और 2 रातें ध्यान करते हैं। बाहर और अंदर के शत्रुओं को समाप्त करने में दोनों राजकुमार तत्पर रहते हैं। उधर सीता जी सारे स्त्रियोचित गुणों से संपन्न, समस्त विद्याओं से सुसज्जित एक निपुण अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार होती हैं। उनकी बहनें भी सर्वगुण संपन्न होती हैं। श्रोता भाई बहनों, धार्मिक पुरुष का विवाह अगर धार्मिक स्त्री से हो तो वह सर्वोत्तम विवाह या धर्म विवाह क्यों नहीं कहलाएगा। श्री राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह उत्तम विवाह था, धर्म विवाह था। कथा को अगले कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। श्रोताओं, अभी आप भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर शांति महावीर जी को हम धन्यवाद देते हैं।

जी हाँ, परमपिता परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वो अपने भक्तों के मन की सभी बातों को जान जाते हैं। श्रोताओं, आज है 1 अक्टूबर और आज एक बहुत ही विशेष दिन मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। जी हाँ, वृद्धों की बात करें तो समय के साथ सब कुछ ढल जाता है। आज एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे

वो बड़ा होता है और धीरे धीरे वो भी वृद्ध हो जाता है। वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन जीवन के हर पल में करना चाहिए। हमारे मन में उनके प्रति प्रेम होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और माता पिता भी तो परमपिता परमेश्वर का ही रूप है, और माता पिता को यदि हम दुख देंगे तो हम सुखी कैसे रह पाएंगे।

और श्रोताओ, इसी के साथ हम भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। और ईश्वर की भक्ति कहीं ना कहीं हमारे मन को शुद्ध करती है, मन को सकारात्मक करती है। और यहाँ पर इस अंतिम प्रस्तुति के साथ भक्ति सागर इस कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं। और इसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ यू ही रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर। सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
2: चलिए, यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो मॉरिशस पर। पहली अक्टूबर गुरुवार का दिन, शाम के 5 बज चुके हैं और लेकर आ गए हैं सदाबहार गीत इस प्रोग्राम को। सदाबहार गीतों की बात हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि पुराने गाने अपने आप में, ऐसा लगता है कि आज शायद ये गाना सुनने को मिलेगा या आज वो गाना सुनने को मिलेगा। सदाबहार गीत है ही इतने खूबसूरत के क्या कहे, क्या पता कौन सा गाना किसके दिल के करीब है, क्या पता कौन से गाने से किससे खास की याद जुड़ी है। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे हमारे सुनने वाले जो है अपने डेडिकेशंस भेजते हैं। इसे तो ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शाम को भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है 5251700005 पर, और इस खूबसूरत गाने के साथ, जुदाई फिल्म के इस तराने के साथ, जुदाई यानी कि जो 80 के सालों में आई थी, इस फिल्म के इस गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: बिल्डिंग अच्छी लग रही है, फ्लैट है उसमें?
2: एक फ्लैट है उसमें। वो क्या है साहब, यहाँ रहने वाली एक औरत बालकनी से गिर के मर गई थी।
3: मंजीत का भूत, मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ।
4: मौत हमें उस विशाल अंधेरे में ले जाती है जो हमारे चारों तरफ छाया हुआ है, और हम अपनी जिंदगी की छोटी सी रोशनी में रहकर उसकी हकीकत को भूल जाते हैं।
5: हजारों नरकों में।
0: शनिवार 3 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म भूत 2003 की मूवी उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन पर फिल्माई गई भूत

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: मिलना बिछड़ना तो दस्तूर है ज़िंदगी का, कोई मिलता है कोई बिछड़ता है। ऐसा भी होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ पल के लिए कुछ लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर का रिश्ता शायद है इनसे, और कुछ लोगों के साथ बरसों से ताल्लुक़ होता है लेकिन वो गहराई रिश्ते में नहीं बन पाती है। ज़िंदगी के इस सफ़र में हर प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, और ज़िंदगी के इस सफ़र में हम यादों को बनाते जाते हैं, और इन्हीं यादों के बीच इन्हीं गानों को सुनते सुनते अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे मैसेजेस जो इस प्रोग्राम के दौरान हमें मिलते हैं। यहाँ पर इस समय वाकवा से सूबी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही कि थोड़ी सी बिजी है, ओके लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम को सुन रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सिलेक्शन को एंजॉय कर रही है, थैंक यू सो मच सूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए। हम तो दीवाने हैं आपके प्रोग्राम के, आपके गानों के थकान भाग जाती है। ये मैसेज आया है यहाँ पर माला जी की ओर से, है ना? तो चलिए माला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए।

और पति सूर्यदेव भी हमारा साथ साथ आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए ऐसे में ये जो गाना है यहाँ पर बिल्कुल चल पड़ा है आप सभी के लिए। जमाने को दिखाना है फिल्म का तराना है, पूछो ना यार क्या हुआ। और ये जो गाना है इसे आप सुनेंगे आशा जी, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes!

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए यहाँ पर आप लोग के मैसेज पढ़कर हमें बड़ा अच्छा लगता है। इतने प्यार भरे मैसेजेस आते हैं और हम क्या कहें। यहाँ पर एक मैसेज आया है, सुमी जी आप तेरे नाम के दीवाने हैं, व्हाट अ लवली सॉन्ग। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपकी ओर से गाना जाता है आपके सभी दोस्तों के नाम। शोभा पूरन जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है, गाना आपके पूरे परिवार के लिए भी। यस, अगला जो तराना है यहाँ पर आसपास फिल्म का ये तराना होगा, लता जी की आवाज़ में, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा। यकीनन ज़िंदगी में कितने गम होते हैं, कितने दुख होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो हमें इस दुख से छुटकारा दे, है ना। बहुत से लोग दुखी होते हैं तो उदासी में चले जाते हैं, उस दुख से निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कभी कभार मूड ख़राब हो तो कोई अच्छा गाना सुन लेते हैं तो मूड ठीक हो जाता है, पता है। चलिए मानिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभी तक आपसे ही जुड़े हुए हैं हम, आपके प्यारे प्यारे गानों को सुन रहे हैं हम। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद मानिता जी इस खूबसूरत मैसेज के लिए। मदालबिया से अनीता जी भी प्यारे प्यारे गाने सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ऐसे में ये अगला तराना आप सभी के नाम।

0: अजी, इन गानों को जितनी बार सुनते हैं उतनी ही बार मानो इन गानों से प्यार हो जाता है। गाने हैं ही ऐसे और आपका भी प्यार इन गानों के प्रति बहुत है, ये तो हमें आपके मैसेजेस के जरिए पता ही चल रहा है। संध्या जी जो है है लक्ष्मी जी बॉम्बू से हमारे साथ जुड़ी हुई है और गानों को पसंद कर रही है। और यहाँ पर अगला मैसेज शिमला जी की ओर से आया है, कह रही अभी अभी घर पहुँची है और आते ही रेडियो ऑन किया है, गाने बड़े कमाल के हैं और शुक्रिया कह रही है। बेलरोस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया शिमला जी। और यहाँ पर तीन देवियों का जो गाना हमने चलाया था आपको बड़ा अच्छा लगा था, तो बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी, शुभ संध्या वो सबको कह रही है। देवी जी की ओर से मैसेज है। अगला जो तराना हमने लिया है आप लोगों के लिए वो है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना, लता जी किशोरदा की आवाज़ों में, हज़ार राहें मुड़ के देखी।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: और चलिए इसी के साथ सदाबहार गीतों का ये जो सफ़र रहा ख़त्म होने को चला, इन गानों को सुनते सुनते मानो कितनी सारी यादें जो है ताज़ा हो गई है ना। सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में अभी सनी फिल्म का ये जो तराना था बहुत ही खूबसूरत था। और इसी के साथ अगले गाने के साथ हम आपसे विदा लेंगे, जल्द हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी। जी हाँ, ऐसे ही आप भी रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिएगा। आपके इतने सारे मैसेजेस हमें मिले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। और यहाँ पर शुभ संध्या आप सभी को हमारी ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: पहली अक्टूबर 2026 से सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार है। बुजुर्गों नई पीढ़ी के बीच फासले को घटाना समाज की भलाई तथा पारिवारिक कल्याण के लिए अहम। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर फिनिक्स में अंतरिम प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक बार फिर से हमारे बुजुर्गों की अहमियत पर जोर डाला गया। ब्रेस्ट कैंसर पर आगाही फैलाने और अर्ली स्क्रीनिंग के लिए महिलाओं की हिम्मत बढ़ाने के वास्ते आज एक नए ऐप को आम किया गया, पिंक पल्स। पिंक अक्टूबर के अभियानों के सिलसिले में जारी किया गया। शागोज के सिलसिले में मॉरिशस और यूके के बीच तय समझौते के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री ने बयान की, ये समझौता अमेरिका के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तेल अवीव और दुबई के परवाज के दौरान पायलटों के झगड़े की जांच शुरू, दोनों मंजिलों के बीच फ्लाई दुबई की उड़ानों पर रोक। नमस्कार, एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री ने आज सुबह फिनिक्स स्थित जेएनजे सभागार में बुजुर्ग लोगों को जुटाया। मंत्री अशोक सुभो ने बुजुर्गों और नौजवानों के बीच अंतर पीढ़ी वार्ता को महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने वेलफेयर स्टेट

0: मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्या नवामागी ने सुधारों और ठोस कदमों के माध्यम से वृद्ध लोगों की सुरक्षा एवं सम्मान मजबूत करने की सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके मद्देनजर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार संबंधी कार्यों में प्रगति हो रही है। इन सुधारों का मकसद है हमारे बुजुर्ग लोगों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाना और साथ में उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलाने में सुविधा प्रदान करना। अनाबेल वर्बे की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान।
1: अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाने के लिए देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ आए हुए थे। इस दिन रिथिंकिंग सिस्टम्स फॉर लॉन्गर लाइव्स यानी लंबी आयु के लिए प्रणालियों पर फिर से गौर करने के विषय पर विचार किया गया। नई पीढ़ियों और वृद्ध लोगों के बीच दूरी कम करने के बारे में भी विचार किया गया।
2: Nos parents et nos enfants qui ont toujours ensemble, mais vu comment dire, moi-même ou mes enfants pas avec moi, je dehors, je ne reste, ben c'est comme ça nous gagnons contact par la nouvelle technologie.
3: Moi, je trouvais qu'il était besoin de faire la loi un petit peu plus sévère, lorsqu'un jeune qui peut en acte de ban vieille personne.
4: 300 personnes âgées, pas si pour une âgée, mais 100 jeunes personnes âgées pas capable de bouger.
5: On a trois enfants, on est très correct pour mon papi.
1: इस अवसर पर देश के निर्माण में वृद्ध लोगों के योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। सीनियर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष नागाइडू गाबा नागाइडू कहते हैं,
6: Nous, bonne personne âgée, nous avons un patrimoine qui n'est pas trouvé dans aucun musée. Lié avec nous. Nous, l'expérience, nous, l'intelligence, nos bons souvenirs, et valeurs, et nos histoires. Nous, l'histoire. Ainsi donc, nous avons le devoir de transmettre ce patrimoine à la génération montante.
1: वृद्ध लोगों की एक विरासत है जो किसी संग्रहालय में नहीं मिलता। वो हमारे पास है, हमारे अनुभव, ज्ञान, यादें और मूल्य, हमारा इतिहास। हमारा कर्तव्य है कि इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मॉरिशस में पारंपरिक परिवार की संरचना बदल रही है, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, जबकि नई पीढ़ियां ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माहौल में बड़े हो रहे हैं। जूनियर मंत्री कुगन पगापेन कहते हैं, हाल में की गई खोज से पता चलता है कि परिवार में बुजुर्ग लोगों की कमी हमारे बच्चों के व्यवहार को बिगाड़ देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैबलेट्स किसी बुजुर्ग के प्रेम और धैर्य की जगह नहीं ले सकते। समाज सुरक्षा मंत्री ने कार्य के गठन पर विचार करने के बारे में बात की। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को बुजुर्ग माता पिता को सहारा देते हुए अपने पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाने का मौका देना है। मंत्री अशोक सुभो कहते हैं,
7: Nous appelons aujourd'hui dialogue et l'initiative entre différentes générations.
1: आज हम विभिन्न पीढ़ियों के बीच बातचीत शुरू कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय बातचीत। हमें अर्थव्यवस्था पर फिर से गौर करना चाहिए। मैं 5 दिन में 40 घंटे काम करने के पक्ष में हूँ, ताकि नौजवान लोग घर के वृद्ध लोगों की देखभाल कर सके और अपने बच्चों का भी। अन्य देशों में पाए जाने वाले सोलिडारिटी लीव्स प्रस्तावित कर रहा हूँ, ताकि वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए छुट्टी मिल सके। अंतरिम प्रधानमंत्री ने पीढ़ियों के बीच पुल बनाने के महत्व पर जोर दिया। आर्या नवामागी ने वृद्ध लोगों के पक्ष में उठाए गए कदमों के बारे में बात की। सरकार का उद्देश्य है मॉरिशस में हर एक वृद्ध व्यक्ति को सम्मान के साथ समाज में अपनी जगह बनाए रखते हुए जीने का अवसर देना।
8: Le gouvernement peut mettre en place une réforme et des mesures concrètes pour que le respect et la protection des grands du monde vienne une réalité. Nous peut avancer.
1: हमारी सरकार सुधार लागू कर रही है और ठोस कदम उठा रही है, ताकि बुजुर्ग लोगों का सम्मान और रक्षा एक सच्चाई बने। प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्संस एक्ट में सुधार ला रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए कानून में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हो उन वृद्ध लोगों के लिए जो हिंसा का शिकार होते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ या दादी नानी का पेंशन बिना उसकी अनुमति से लेता है, तो ये ज्यादती है और कानून इसे ज्यादती मानेगा। लागू किए गए कदमों के अलावा पीढ़ियों के बीच संबंध बनाए रखना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। बुजुर्गों का साथ देते हुए उनके योगदान को मान्यता देना, समाज में उन्हें एक जगह देना जरूरी है और ये सुनिश्चित करना है कि वृद्ध होने का मतलब अकेला छोड़ देना नहीं है।
0: मॉरिशस और राष्ट्र संघ विकास के क्षेत्र में अपने सहयोग का जायजा ले रही है। 2024-2028 सहयोग कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार संयुक्त समिति की दूसरी बैठक आज बालाक्लावा के मारिटाइम होटल में लगी।

0: इसकी अध्यक्षता मंत्री रितेश रामफल और लीजा सिंह कर रहे थे। दोनों पक्षों का मानना है कि नई चुनौतियों का सामना कर पाने के लिए हमारी साझेदारी बरकरार रखनी चाहिए।
1: मॉरिशस और संयुक्त राष्ट्र के बीच कायम सहयोग प्रोग्राम के मध्य स्तर पर मॉरिशस विदेश मंत्री ने परियोजनाएं अमल में लाए जाने के सिलसिले में कई समस्याओं का उल्लेख किया। हालांकि पीपल और प्रॉस्पेरिटी वाले हिस्सों में संतोषजनक प्रगति

0: पर्यावरण का पहलू चिंता का विषय बना हुआ है। एक छोटा टापू देश होने के कारण मॉरिशस काफी हद तक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, जिसके लिए नई परिस्थितियों के साथ ढलना और मजबूती बढ़ाना और आवश्यक हो गया है। मंत्री रितेश रामफल कहते हैं 17 सितंबर को विश्व बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अडैप्टेशन और रेजिलियंस से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मॉरिशस को लगभग 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें राष्ट्रसंघ के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक नई राष्ट्रीय जल रणनीति की भी मांग कर रहे हैं, जिसमें इस महत्वपूर्ण संसाधन के भंडारण और रिटेंशन पर खास बल दिया जाए। अन्य प्राथमिकताओं में नौजवानों के बीच ड्रग्स की समस्या से निपटना शामिल है। मॉरिशस के लिए राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि लीजा सिंह के अनुसार मॉरिशस और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी मजबूत है, लेकिन नई चुनौतियों का सामना करना भी जरूरी है। उन्होंने डिजिटल, मेडिकल और आर्थिक क्षेत्रों में हुई प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पिछले साल हमने ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सरकार की मदद की, साथ ही हमने डिजिटल बदलाव की दिशा में संबद्ध अधिकारियों के साथ काम किया। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल रोड मैप की कार्य योजना की लॉन्चिंग में आईसीटी मंत्रालय को सहयोग प्रदान किया। इलाकाई स्तर पर हमने अन्य अफ्रीकी टापू देशों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सामग्रियों की संयुक्त खरीद के लिए जिम्मेदार एक सचिवालय मॉरिशस में कायम किया। ये संस्था करीब 35 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस पहल से वैश्विक मंडी में दवाइयां बेहतर दाम पर प्राप्त करने और इनकी नियमित आपूर्ति की गारंटी संभव होती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि मॉरिशस को एक ऐसी संगठन की आवश्यकता है जो ज्यादा कुशल और लक्षित हो और ठोस समाधान देने में सक्षम रहे, खासकर फाइनेंसिंग, समावेश और सतत विकास के मामलों में।
1: सागा उन्नु की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का रहा। सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। आज से पिंक अक्टूबर की शुरुआत हुई। ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता अभियान के लिए एबेन के हनेसी पार्क होटल में पिंक पल्स की लॉन्चिंग की गई। ये एक अहम ऐप है जो अर्ली स्क्रीनिंग के अलग अलग चरणों पर यूजरों को सहायता देता है। रिपोर्ट अंजुगाम गुलाम की, विवरण आस्था गोविंद तमन।
2: Oui, bon, c'est un médecin pour guider, tension à main grossière, tout ça.
3: Moi, déjà, il y a un problème qui me sentit un petit grosseur dans mon sein. Ben, me fait dire c'est souvent. Je ne pas trop connaître, mais me sais faire lire tant que possible.
4: Je me trouvais important qu'il nous ait checké pour nous, parce que nous ne connaissons à quel moment nous avons un cancer.
5: Est-ce qu'on entend parler de l'application Pink Pulse?
6: Oui, effectivement. J'ai l'application sur mon téléphone.
7: पिंक पल्स एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसे खुद अपने स्तनों की जांच को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।
8: पिंक पल्स इन कमेंसे अ ट्रावेन कन्वर्सेशन एंड कन्वर्सेशन अपन कमराड कुत नीच पे डिस्कटे एंड पे ले टूच पे शेयर द बन लीडे लो क्वांटिटी कैंसर की नु पे गेन या लिल मॉरिस डायर्स अ ट्विन एंड पोर्टेबल दस ला मे की फे नु पास सर्विस अ आउटिल ला पुर नु क्रिए एन ऐप कुत नु कैपाब इन्फॉर्म एंड दिमोन कमेंट फेयर ला पल्पेशन कुत जत कैपाब फेयर ली कुत जत चाक मोआ ए जत लॉगिन जो बन डिटेल।
7: पिंक पल्स के साथ एक नारा भी है जो लोगों का ध्यान खींचता है और खुद जांच करने का संदेश देता है।
9: Tape de DT parce que je trouve qu'on doit vulgariser l'acte même de faire sa palpation. Pena aucune connotation derrière là et du monde vous apprend l'habitude connaît tape de DT les bisavis des affaires normales. Tous les mois une madame les bisavis fait sa palpation. Donc là les bisavis comme un calendrier, comme un alarme qui nous connaît, qui zoo, qui date, qui est nous bisavis nos palpations.
7: हर साल महिलाओं में स्तन कैंसर के सैकड़ों नए मामले सामने आते हैं, इसलिए बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानने के लिए खुद जांच करना काफी अहम है।
9: 220 décès par an reliés au cancer du sein et qui capable et peinant si tous les mois nous fait palpation, nous veille nous l'écho et nous service application. Donc la palpation normalement nous pour donner lump and boule, mais c'est pas que ça. 6h30 leur application là, vous trouvez un signe we have to look out for comme changement de texture de la peau et quand nous pèse nous tétons un liquide qui a sorti comme du sang et nous la peau qui a vu comme la peau d'orange et il y a beaucoup de signes qui déjà leur application là et ça c'est un signe qui nous besoin aussi get nous l'écho dans la glace quand nous trouvons un changement parce qu'ils nous aiment nous connaître les corps puisqu'elles nous disent.
7: Lekin Pink Pulse sirf mahilaon ke liye nahi hai. Mauritius mein har saal purushon mein bhi breast cancer ke 5 se 6 naye mamle darj kiye jate hain.
10: Au courant qu'il y a un monsieur aussi capable d'avoir un cancer du sein.
11: Monsieur, non, pas au courant.

0: cancer du sein, vous connaissez, concerne que les filles, que les dames.
1: Nous au courant et dans la presse partout, en documentant.
2: पिंक पल्स महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जरूरी जानकारी एक ही जगह देता है। किन संकेतों और लक्षणों पर ध्यान देना है, खुद जांच कैसे करनी है और जांच केंद्र तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी इसमें दी गई है।
3: L'application est gratuite. Vous avez scan QR code et il y a un pod directement au Google Play ou App Store, ça dépend qui portable vous êtes là. Vous downloadez et vous savez, il est bien user friendly.
2: पिंक पल्स एक छोटी सी पहल लेकिन संदेश साफ है, अपने शरीर को जानिए, बदलाव को पहचानिए और समय रहते जांच कीजिए।
4: राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल विदेश के औपचारिक मिशन पर हैं। वे टुवालू, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के आमंत्रण किए जाने के बाद टुवालू और फिजी में आयोजित पूर्व COP31 बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति अगले 9 अक्टूबर को स्वदेश लौटेंगे। उनकी अनुपस्थिति में ओबेर हंगली अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। शागर्स द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता वापस दिलाने की कोशिश एक नए नाजुक चरण में प्रवेश कर चुका है। मई 2025 में मॉरिशस और यूके के बीच तय समझौते के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि यह समझौता अमेरिका के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इस नए विकास के मद्देनजर मिडल टेम्पल एसोसिएशन ने आज शागोस मुद्दी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया ताकि मॉरिशस के स्थान को बेहतर तरीके से समझाया जा सके। वाकवा स्थित SMF जिमकाना आज सुबह कार्रवाई स्थल में तब्दील। असल में वहां पर हस्तक्षेप करने वाले कुत्ते, राहत कार्रवाई और सशस्त्र गुट को नाकाम करने की कार्रवाइयां चलाई गई। मॉरिशस एवं रीयूनियन टापू की ताकतों के बीच सहयोग के अंतर्गत एक सिमुलेशन कार्रवाई चलाई गई। सहा उनु गीता स्नारायण।
5: Le personnel du GPM va montrer un autre moyen d'insertion tactique connu comme le double rôle.
6: SMF और JPM की इन टीमों के लिए हर कदम अहम है। इन्हें हर समय किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक अभ्यास और प्रदर्शन के दौरान कई परिस्थितियों को दर्शाया गया। हथियारबंद लोगों से निपटना, घायलों को सुरक्षित बाहर निकालना और बचाव अभियान चलाना, ऐसे कई अभ्यास किए गए। नशीले और प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित इन कुत्तों ने अपने अनुशासन और नियंत्रण का शानदार प्रदर्शन किया। संदिग्धों का पीछा करने और उन्हें काबू में करने में भी इनकी क्षमता देखने को मिली। ये सभी अभ्यास उन वास्तविक परिस्थितियों के करीब थे जिनका सामना इन विशेष इकाइयों को अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। इस प्रदर्शन के पीछे मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच प्रशिक्षण और अनुभवों का आदान प्रदान भी अहम है। ASP विशाल आनंद उग्नू कहते हैं,
7: Nous avons toujours invité ici à l'SMF qui gagne l'occasion pour pouvoir faire un savoir-faire, que ce soit à la réunion.
6: SMF में कई इकाइयां हैं जिन्हें रीयूनियन और मॉरिशस में प्रशिक्षण दिया जाता है। फ्रांसीसी प्रशिक्षक भी मॉरिशस आते हैं। अब हमारे पास संपर्क हैं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। चाहे मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन, दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षण पाने वाले जवान स्थानीय संदर्भ में अपनी जानकारियां लागू कर सकते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए टीमों को तैयार करना और उनके बीच तालमेल को और मजबूत करना है। वास्तविक संकट के समय इन जवानों को सीखे गए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, तेजी से कार्रवाई करनी होगी, मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा।
4: आज कच्छ दिशे मापू में मॉरिशन पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 38वीं वार्षिक पर्यटन महासभा का आयोजन किया गया। अंतरिम राष्ट्रपति रॉबर्ट हंगले और पर्यटन मंत्री किशोर जीवाल भी मौजूद रहे। शीर्षक रहा मॉरिशन पर्यटन, मुलाकात, आदान प्रदान एवं मिशन। शिक्षण और मानव मूल्यों के माध्यम से शांति की नीति को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति एवं शांति दिवस के संदर्भ

0: संकल्प में महात्मा गांधी संस्थान में एक सत्र लगाया गया। विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान हुआ। आस्था गोपिन चितामन की ये रिपोर्ट पेश है।
1: ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भारतीय चिंतन में शांति की कामना सदियों से व्यक्ति, समाज और पूरे विश्व के कल्याण से जुड़ी रही है। शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह और हर दिन। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान ने शिक्षाविदों और छात्रों को एक मंच पर लाया। भारतीय दर्शन में शांति का क्या अर्थ है? प्रोफेसर सत्यपाल सिंह के अनुसार शांति केवल संघर्ष का अभाव नहीं, ये व्यक्ति के भीतर के संतुलन से भी जुड़ी है।
2: व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक ही है, सुख से जीना, और यदि उसी में अशांति होगी तो फिर जीवन क्या है। अब परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर और चलें तो राष्ट्रों के स्तर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो शांति का अभाव है, वो आपको कहीं जीने ही नहीं देता है। आप पूरे विश्व में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई युद्ध, कोई ना कोई झगड़ा, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमेशा दिखाई देते हैं। इस झगड़े का मूल कारण है सामंजस्य का अभाव और मनुष्य की पूरी व्यवस्था में ग्रीड, लालच। जब हमारा ये शांत होगा, ये समाप्त होगा, तो हम शांति से रह पाएंगे। और वो तभी है जब लिव एंड लेट लिव की बात करेंगे, जब हम जियो और जीने दो की बात करेंगे, जब हम पूरे समाज को एक मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का जब भाव होगा, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उसमें यही कहा है कि जीवन जो है वो एक व्यक्ति का नहीं है, समष्टि में जो जीवन मुझ में है वही आपके अंदर भी है, वही औरों के अंदर भी है, संसार के हर व्यक्ति में ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारों में सभी पशु पक्षी प्राणी जड़ चेतन सब आ जाते हैं।
1: वहीं डॉक्टर लीवा कॉपेन ने शांति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सामने रखा जो शिक्षा, नैतिक मूल्यों और हमारे कार्यों के जरिए लगातार आगे बढ़ती है।
3: Dans cette réflexion, nous aussi engage comment est-ce que tout un chacun, à différents niveaux de la société ou à différents niveaux de leur existence, peuvent aussi bénéficier de ce moment paisible, de cet environnement paisible, et comment est-ce que nous capables de chaque individu comme une mine riche en pierres précieuses et saisissent l'éducation qui peut capable vraiment faire les livrer ça un trésor là.
1: अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन संदेश एक, शांति केवल एक विचार न रहे बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और समाज का हिस्सा बने।
0: मॉरिशस विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक महानुभाव विनेश हुकुम सिंह का निधन। वे मॉरिशस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वाइस चांसलर थे और एक प्रसिद्ध भाषाविद भी। क्रियोल मॉरिशियन के हक में उन्होंने अहम कार्य किए हैं। वे मातृभाषा को काफ़ी अहमियत देते थे और कई वर्षों तक वे हमारी भाषाई विरासत की नींव रखने में बिता रहे थे। विदेशी समाचारों में अमेरिकी विमानी कंपनी फ्लाई दुबई ने इसराइल से और वहां की तरफ भरी जाने वाली सभी उड़ानों पर पाबंदी लगाई है। कल दुबई और तेल अवीव के बीच प्रवेश के दौरान हुए झगड़े में तहकीकात की जा रही है। कंपनी ने ये उल्लेख किया है कि विमान के कॉकपिट में झगड़ा शुरू हुआ। रिपोर्ट नीतूषा
4: कल हुई। दुबई उड़ान से जुड़ी घटना के बाद जांच जारी रहने तक इसराइल से आने जाने वाली इस एयरलाइन की उड़ानें निलंबित रहेंगी, कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया। कई यात्रियों के बयानों के अनुसार एक पायलट ने को पायलट द्वारा विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने और उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश का विरोध किया। इसके बाद कॉकपिट में हाथापाई शुरू हो गई। भारतीय पायलट जिसने को पायलट को ये गंभीर कदम उठाने से रोक दिया, वो घायल हो गया। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अनुसार उसे सऊदी शहर तबूक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की थी।
5: कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया,
6: He stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to amazing.
4: इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक गंभीर सुरक्षा घटना बताया है।
7: The stabbing pilot has been arrested. He is currently being interrogated by the Saudi authorities. We are maintaining continuous contact with the relevant authorities.
4: यात्रियों में अधिकांश इसराइली नागरिक थे और वे दुबई से यात्रा कर रहे थे। वे सभी सुरक्षित हैं। बाद में उन्होंने दूसरी उड़ान से यात्रा की जो इसराइल में उतरी। पत्रकारों से

0: बात करते हुए यात्रियों ने बताया कि कॉकपिट में हिंसक झड़प हुई, विमान की ऊंचाई अचानक कम हुई और फिर संदिग्ध व्यक्ति पर काबू पाया गया।
1: रेनियन टापू में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नोट की गई है। कल से पेट्रोल का दाम 2 यूरो हो गया है और गैसोल 1.80 यूरो में बेचा जाने लगा है। मौसम संबंधी जानकारियां आस्था गोविंद तमन के साथ।
2: हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवा की लहरों का असर है। आज रात को पूर्वानुमान है कि देश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। कल दिन के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहाना रहेगा। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 6:07 पर, सूर्योदय 5:51 पर।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम कहेंगे अपनी तकनीकी सहयोगी लुडोविका और मार्टिन को भी। कुछ ही समय में शोक समाचार।

रॉयल रोड ईलदाउप्रमे रॉयल रोड ईलदाउप्रमे 68 साल के 68 इयर्स ओल्ड के जनाब अली भाई रसमोली, जनाब अली भाई रसमोली का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात साढ़े आठ बजे उनके मकान रॉयल रोड ईलदाउप्र से उठाकर दफनाने के लिए पलंदी पापाए का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे टुनाइट एट 8:30 PM। Chemin La Plaine Notre-Dame, Chemin La Plaine Notre-Dame, 82 साल के 82 years old के श्री लखिंदर दुर्गा जो सूर्य नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती देवंती दुर्गा के घर Chemin La Plaine Notre-Dame से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस्त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। गैबी लेन पाल्मा कैट्रोबोर्ड में 84 साल के 84 years old की श्रीमती समुद्री फिराग, पैदाशी नाम रामबरन जो सबिता नाम से भी जानी जाती थी और पहले रॉयल रोड वैद्य रहती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे श्री रवि फिराग के घर गैबी लेन पाल्मा का ट्रिबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा का ट्रिबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 10 AM। सुकुलेन थ्वाबुचिक में 48 साल के 48 years old के श्री अनिरुद्ध सिनाथ जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर सुकुलेन थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन वेल थ्वाबुचिक के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:11 AM। रोथ्रॉयल ऑरिएटा में 72 साल के 72 years old की श्रीमती गीता दुखरन जो गीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अश्विन दुखरन के घर रोथ्रॉयल ऑरिएटा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:11 AM। रोथ्रॉयल कैथ्रसेर में 73 साल के 73 years old की श्रीमती माउती भंगरूप जो सुखवंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री धीरज

हरी के घर ओतवायाल कत्र से उसी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बर्षों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो 8:11 AM ओतवायाल कांगारो में, ओतवायाल कांगारो में 72 साल के 72 years old की श्रीमती विश्वानी हराधन, श्रीमती विश्वानी हराधन जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी, पैदाशी नाम बिराज की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री गिरीश हराधन के घर ओतवायाल कांगारो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथ कोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो 8 noon ओतवायाल क्वायो में, ओतवायाल क्वायो में 70 साल के 70 years old के श्री जयप्रकाश भगवत, श्री जयप्रकाश भगवत जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके घर ओतवायाल क्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो 8:02 PM वन सेल्स लो लेन घोबेलिया में 78 साल के 78 years old के श्री विलामुतु बालन, श्री विलामुतु बालन जो सिनेवन नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री पुमालेन पालियान के घर वोनसक लो लेन घोंबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट प्रोक्यूस रिवियर डी क्रियोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो 8:02 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 3 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक बेल्टेया और आसपास के इलाकों में जैसे कि मौसलमा बेल्टेया में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और रविवार 4 अक्टूबर को सुबह के 8 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में रेलवे रोड और फ्लामिंगो रोड मौसलमा ब्लूप्रिंट हाईलैंड्स मौसलमा अम्निकेन और मौसलमा हाईलैंड रोज मौसलमा कोयराची और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

每一天都是重新开始的机会，昨天的烦恼就让它留在昨天吧。

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
2: भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं आज सबका दिन बहुत ही सुंदर से बीता होगा क्योंकि अब थोड़ा सा मन मौसम बदलने के साथ साथ कुछ पूजा पाठ की ओर ज़्यादा लगने लगा है और लगाना भी चाहिए। और अब तो त्योहारों के दिन आ रहे हैं और हमारे सारे त्यौहार परमात्मा से जुड़ाते हैं और यह जो जोड़ है परमात्मा से, अर्थात हमारा कोई भी त्यौहार केवल नाच गाना या मस्ती के लिए नहीं होता। हर त्यौहार में हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उससे जुड़ते हैं। तो श्रोताओं चलिए कुछ समय के लिए भजले प्रभु का नाम और मन में उस प्रभु को याद करें ताकि हमारा चरित्र जो है वो बहुत अच्छा हो। श्रोताओं कल 2 अक्टूबर है और महात्मा गांधी को लोग महात्मा कहते हैं और उनके समय में हम सभी जानते हैं वे जब एक बात कह देते थे तो लाखों लाखों लोग उस रास्ते पर चल पड़ते थे। बहुत ही सुंदर नरसिंह मेहता का एक भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। यह भजन गांधी जी को बहुत ही प्रिय था। हम सब भी अभी इस भजन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहली परिभाषा यही है कि वैष्णव जन अर्थात विष्णु का जन वह है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। आज का ज़माना बड़ा अजीब है श्रोताओं, हम सेल्फी ले सकते हैं, फोटोज़ ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर चीज़ों को डालते हैं, लेकिन किसी को कितनी तकलीफ हो रही है उसकी अनुभूति हम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार तो कोई डूब रहा होता है, लोग केवल फोटोज़ ले रहे होते हैं और बचाने का प्रयास नहीं करते। तो बहुत ही सुंदर नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। अपनी पीड़ा को तो सब समझते हैं, लेकिन जो दूसरे की पीड़ा को समझे, विष्णु का जन, भगवान का जन वही है। तो आइए आनंद लेते हैं इस सुंदर भजन का।

श्रोताओं, जो विष्णु का जन्म होता है, प्रभु का जन्म होता है, वह दूसरे का हिस्सा कभी नहीं हड़पता है, वह किसी से कुछ छीनता नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह कभी गलत काम नहीं करता है। सचमुच जो प्रभु से जुड़ जाता है, जिसके जीवन का आधार भजले प्रभु का नाम हो जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र और सादगीमय बना लेता है। आइए सुनते हैं ये।

श्रोताओं, भक्ति की यात्रा आसान नहीं होती है, क्योंकि जैसे किसी पेड़ की फैलती डालियों को हम काट के उस पेड़ को सुंदर बनाते हैं, ऐसे ही हमारे चरित्र

में भी कुछ चीज़ें जो समाज में रहते रहते इधर उधर से चिपकती हैं या हमारे स्वभाव को बिगाड़ती हैं, रोज़ रात को सोने से पहले उसका चिंतन करना बड़ा ज़रूरी है। जो कुछ भी इधर उधर से क्रोध, मोह, माया, लोभ चिपका है, उस सबको पिघलना चाहिए। और वह कब पिघलेगा? जब भजले प्रभु का नाम होगा।

और अंत में श्रोताओं, उस प्रभु का नाम जिसने भी लिया, वह शबरी हो, वह हनुमान हो, वह प्रहलाद हो, वह कोई भी हो, वह राधा हो या मीरा हो, उन सभी ने उस प्रभु को महसूस किया, उसकी शक्ति को पाया, क्योंकि भजले प्रभु का नाम ही उनके जीवन का आधार था। तो श्रोताओं, हम भी अपनी शाम को प्रभु का नाम लेते हुए समाप्त करें और सोने से पहले मन को एकदम स्वच्छ कर सकें। किसी के लिए कोई बुराई, कोई क्रोध, कोई द्वेष ना रखें। पूरी तरह से मन को धोकर साफ करके उस प्रभु का नाम याद करें, बस भज ले प्रभु का नाम। तो चलिए, इस भजन के साथ ही अलका धनपत को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है,

दिलदारी दिल की बेनियाजी है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी ज़्यादा सामान होने का नाम नहीं, बल्कि असल मालदारी दिल की मालदारी है। बहुत ज़्यादा माल रखने वाला शख्स भी दिल से मोहताज हो सकता है, अगर वो हर वक्त मज़ीद माल की ख्वाहिश में मुब्तिला रहे। उसके बरअक्स कम माल रखने वाला शख्स अगर अल्लाह की अता पर मुतमईन और शुक्रगुजार हो तो वो हकीकी मानों में दिल का गनी है।

हो गल बा सभी भाई ये बहन लोगन के संगतिया लोगन के हमार गठ छोर प्रणाम स्वीकार करे जा तोहर अपन मन पसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन RM फ्री और AM2 रेडियो मॉरिशस पर तोहर स्वागत बाते। भोजपुरी तड़का के हम सफर लोगन बेझिझक मांग करे जा अपन खास भोजपुरी गीतवन के और नंबर वात वही है काथोवे सैंक उषा तुहर संगे रात के 11 बजे ले त चले आज का पहल का गीत सुना जा बिस्वानी दीपवा के गावल गीत

सोनुआ कौन मो बिलेट फो बिलेट बोला था वा आज हम तोरा एक बिलेट दिया।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:17 हो गल बा। श्रोता लोग, अक्टूबर महीना के पहल का तिथि आज है और ई हा महीने के पहल का भोजपुरी तर का प्रोग्राम चल कलाकार लोगन के मान देवत हवा और लोग के गाना तोरा बेहद पसंद बातें कर खातिर बहुत धन्यवाद। चला अगला गीत विशाल जी खातिर और एकर धर्म पत्नी रीना खातिर और साथ ही साथ में सभी विशेष और परिवार खातिर जोन रहिला नुवेल फॉस और खासकर रोहित भाई खातिर जो हमने के सुनता बोबासन से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: चलो श्रोता लोग, भोजपुरी जगत में तो एक से एक गायक और संगीतकार है जेकर कारण हमनी के संस्कृति हमेशा जीवित रहिला, पर तो लोग के बड़े सहयोग मिलेला हमनी के कि ई भाषा के और आगे बढ़ाई खातिर। ऐसे ही अपन मेहरबानी दिखाया जा और यहाँ पर शांति जोन रही लाते रूज ई बखत हमनी के सुनता और जुड़ल बातें गाना सुनता बन जा और गाना मांगत अवन जा दागोचिया के मराठी परिवार खातिर और बगीना ओम खातिर जोन रहिला अप दागोचिया और खासकर भाई बलराम खातिर। राजा बंधु के गावल गीत

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: समझी की हल्दी रहल दिमोस के शादी और लेंडी के चौतारी माचियो के गावल गीत तचला। छोटा लोग जिंदगी में संगीत स्पोर्ट्स और अच्छा सोच नहीं रही तो कैसे जीबा। सबके कानों कोनों के कोनों हो भी बातें जो भी बा अच्छे से समय बिताया जा काहे कि ये दुनिया में तनाव कर कोनों कमी नहीं बा। चला करा दूर तनाव भोजपुरी तड़का के प्रति बराबर लगाव और चला अगला गीत नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और गाना पृथ्वी खातिर जोन रहिला मेबग और गाना मांगा तवंजा पत्नी सुरेखा और

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला श्रोता लोग, ललिता जी खातिर जोन रहीला थ्रियोले कर खातिर गाना चलावब जा। और गाना मांगत अवन जा बहन सुदेवी, ज्ञानी छोटी दीदी, दादी प्रभावती, हरीश भैया, आत्माराम भैया, सुखलाल मौसी और साथ में उषा लुखाना खातिर। त चला कृषि के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:13 होगल बा साथी लोगन आज है विश्व वृद्ध दिवस जानेला थोड़ा जनरल नॉलेज पर ध्यान दे के हमनी अपन के हमेशा अपडेटेड रखीला जा यही विशेष दिन पर हमनी अपन बड़े जन के सम्मान में शुभ कार्य करीला सा बड़े जन लोगन के हाथ थाम के ही त आज हमनी हैजा तक आईली सा सब वृद्ध जन के शत शत नमन त चला अगला गीत चलावब जा सुननु यन के गावल गीत मीना खातिर जोन रहिला काठोबोन गाना मांगा तवन जा अपन खातिर अपन माँ देवीना खातिर और भाई अक्षय खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:22 हो गल बा। श्रोता लोग, भोजपुरी ऐसन एगो भाषा है जोन हमनी मिर्च मसाला डाल के बतियाला सा एकर मजावे कुछ और बातें। ये भाषा के शब्दावली तबरिये मज़ेदार है। एगो बिरयानी खैब पर चटनी नहीं मिली तो बात नहीं बनेला। वैसे ही बोले के अंदाज भोजपुरी में एकदम जरूरी है। तो चल अगला गीत सुना नो, यान के गावल गीत बाजा बोल। ये गाना खास कर सुरेखा जी खातिर और एकर पति देव खातिर और जितना कोई के बखत काम करा था और हमनी के साथ जुड़ल बा। तो चला ये गाना तो लोग भी खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भगल
3: जांच रखे ढगल ऐली।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:47 हो गल बा। साथी लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है, तनाव से तोरे नहीं बुझाए कब कैसन हम बीमारी धर लेलक, है ना। तनाव के दूर भगावा संगीत और खेल कूद में रुचि बढ़ावा, जीवन में खुशी के रंग भर जाए। तो चला अगला गीत, नीरज गुप्त मधु के गावल गीत और ये गाना अक्षय और रीना खातिर जोन रहीला बासा रोड काठबोन और साथ देवतावंजा और साथ ही साथ में सुदेवी जी जोन रहीला वाक्वा और गाना मांगतावंजा दीदी ललिता कुशल परिवार दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के स्नेहा कीर्ति रामरतन परिवार और हमारे तमाम सुनने वाले खातिर जोन जुड़ल बा
2: अरे सुगा सुगा
1: हमर भाई के साला।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: चला झूमा घुमा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस संगे तो चला देखते देखते 11 बजे के बाद पूरा कार्यक्रम में तो हर सुंदर साथ रहल खातिर हृदय से धन्यवाद। अपन ख्याल रखिया जा और हरदम खुशी से जिंदगी के स्वागत करिया। नमस्ते और शुभ रात्रि।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार, मैं हूँ नीलमणि और म्यूजिक के साथ जुड़ने का वक्त हो गया है। कहते हैं ना, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, और जब रात खामोश हो तो एक खूबसूरत धुन दिल के बहुत करीब उतर जाती है। मोहब्बत का एहसास भी कुछ ऐसा ही है, कभी किसी की मुस्कुराहट में, कभी किसी की यादों में, और कभी एक गाने की धुन में। तो रात अभी जवां है, रात बाकी है, बात बाकी है, और मोहब्बत के कुछ सुनहरे पल भी बाकी है। और एक चीज़ है कि इस खूबसूरत दौर ऐसे याद आ रहा है, हमें तुमसे प्यार कितना, कुदरत मूवी से। तो आशा करते हैं कि आप इन्जॉय करें।

जिंदगी का सफर कितना अजीब है ना, पल आते हैं, गुजरते हैं और फिर सिर्फ यादें रह जाती है। इसलिए कहते हैं जब तक सफर है प्यार से जिए, मोहब्बत से जिए और अपनों के साथ वक्त बिताएं। और अगर जिंदगी के सफर को किसी गाने में महसूस करना हो तो 80s का ही एवरग्रीन मेलोडी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना और डेडिकेट कर आपके लिए ही सुनहरे पल में।

कुछ पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी यादें जिंदगी भर साथ रहती है। कभी एक मुलाकात, कभी एक खत, कभी किसी की आवाज और कभी एक गाना। और जब बात हो उन पलों की जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं, तो याद आता है ऐ जिंदगी गले लगा ले सदमा मूवी यानी 1983 में एक ऐसा गाना जो आज भी सुनते ही दिल को एक अलग सी वार्म्थ आ जाती है, दे देता है। तो चलिए इसी एहसास को फील करते हैं साथ।

और दोस्तों पता ही नहीं चला ये पल कितनी जल्दी बीत गया, लेकिन रात अभी पूरी तरह खत्म कहाँ हुई है। यादें तो अभी दिल में हैं और म्यूजिक तो हमेशा साथ में। आज की रात अगर किसी गाने ने आपको किसी अपने की याद दिलाई हो तो उस याद को संभाल कर रखिए, क्योंकि यादें भी तो जिंदगी के सुनहरे पल होते हैं। एंड इस रात को एक खूबसूरत 80s मेलोडीज के साथ ही और इस रात को एक खूबसूरत 80s मेलोडीज के साथ ही यादगार बनाते हैं। नेक्स्ट यानी कि आखिरी गाना करते हैं, जो दोस्त जो साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में और भी गोल्डन बनाते हैं इस फीलिंग को। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, आपका साथ यूं ही बना रहे। शुभ रात्रि, नमस्कार, शबा खैर। मैं हूं नीलमणि और ये था सुनहरा पल, जहां गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं बल्कि महसूस किए जाते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: RM3 रेडियो।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: MBC Radio, your music companion.
1: ओहो हो धन हो धन हो तेरे मेरे प्यार की।
2: क्या प्यार की?
1: अरे कुंडली।
2: कैसे कुंडली? काय की कुंडली?
1: जन्म कुंडली, धर्म कुंडली, कर्म कुंडली, लगन कुंडली, मिल गई रे मिल गई।